नेशन के फन स्टेशन फनीशा रेडियो पर दोस्तों आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनीशा नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान। मोर वैरायटी होती है, मोर चॉइसेस होते हैं और मोर फन भी होता है ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनीशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। बहुत ही हल्के फुल्के मेरे आपके पसंद के गाने चल रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए विद दैट लेकर चलती हूँ आपको अगले गाने की तरफ।

ब्यूटीफुल गाना दोस्तों टेकन फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार जुबीन नौटियाल की आवाज़ में सुने थे आप ये गाना रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पे पिक्चराइज थी ये मूवी। अगले गाने पे चलेंगे, उससे पहले आप सभी को बता दूं कि भाई अगर हमारे गाने सुनते सुनते आपका कभी ध्यान भटका या फिर इधर उधर ध्यान हो गया और आप अगर आपका यू नो इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी उमर ख्वाजा ऐसे एक अटॉर्नी है जो कि ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड फॉर ऑल द सिचुएशंस यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड। यू डोंट पे अंटिल यू विन, दिस इज योर मोटो। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com।

महाराज मूवी से लिया गया था दोस्तों ये गाना, जुनैद खान और शर्वरी वाघ पे पिक्चराइज थी ये मूवी। ये मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो इट्स अ गुड मूवी टू वॉच। और ये गाना तो स्पेशली बहुत ही प्यारा है, जिसको गाया था मोनाली ठाकुर ने। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। आपको एक हेड्स अप दे देती हूँ दोस्तों कि कुछ गानों के बाद आने वाला है एक गिव अवे, सो प्लीज कीप ऑन लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

तूफान मूवी से सुन रहे दोस्तों आप ये गाना स्टार है तू। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि एक गिव अवे आने वाला है, तो जी हाँ सब्र कीजिए भाई, गिव अवे आने वाला है। पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड efficient and get you ready for the future. You can call them. The number to call is 469-942-9888. Again, the number is 469-942-9888. Or you can call, you can visit their website which is agfintechs.com. Agla gana dosto, uske baad aane wala hai chota sa break. Yaani ke uske baad aapke saath kuch baatein, kuch gaane aur ek giveaway lined up here.

0: मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 35 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका मेरा। बिफोर वी डू दैट टाटा बाय बाय टू ईच अदर, बिफोर दैट आपको बता देती हूँ कि फनेशिया रेडियो के ऊपर हमारा जो गिव अवे है वो डेफिनेटली आने वाला है, बट इस गाने के बाद।
1: जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है।

0: सब्जी, अरे काय मुस्कुरा रहे हो?
1: कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं नहीं मुस्कुरा रहे।
0: मुस्कुरा तो रहे हो।
1: नहीं मुस्कुरा रहे।
0: लो लो
2: अनंत। अरे क्या हुआ
3: अनंत? तेरा फोन आया यार।

0: जुगरा।
1: सुपर 30 से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना जिसका नाम था जुग्राफिया, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में। वेल, इंतजार की घड़िया हो चुकी है खत्म, क्योंकि लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे। आपको बता देती हूँ दैट इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद देसी ट्विस्ट, यू कैन हेड टू फन पिज्जा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर। सो फॉर ऑल ऑफ माई वेजी लवर्स, यू कैन ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा विच इज पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी magic. And for the meat lovers, you can try the tandoori chicken pizza, which is a pure smoky perfection straight from the tandoor to your taste bud. So whether you like it bold or beautifully balanced, there is a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For more details, you can visit their website, which is funpizzakitchen.com. एंड नाउ इंतजार की घड़िया हो चुकी है खत्म। गिव अवे ये है दोस्तों कि अगर आपने मेरे सवाल का सही सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का कार्ड, बिल्कुल गिफ्ट कार्ड, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए और फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड फ्री जीत के लेकर जाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नंबर है 9722355555, वो रखना पड़ेगा आपकी स्पीड डायल पे, और जैसे ही मैं सवाल पूछती हूँ तुरंत आपको मुझे कॉल करना है। वेल, सवाल ये है कि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये अगला गाना कौन से मूवी का है। अगला गाना जो प्ले करने वाली हूँ, बताना है कि कौन सी मूवी का है। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। सही जवाब देने वाले को मिल सकता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री।

ब्यूटीफुल गाना है ये, सिनेमाटोग्राफी या फिर इतने अमेजिंग अमेजिंग एक्टर्स है तो गाना देखने को भी बहुत मजा आता है। वेल, सवाल मेरा ये था आप सब लोगों से कि ये जो गाना मैं प्ले करने रही थी यहाँ पे माशू का, वो कौन से मूवी का है? द करेक्ट आंसर इज कॉकटेल 2 एंड सही जवाब मुझे दिया है तरुण जी ने एंड जीत चुके हैं वो फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गया है तरुण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मूविंग ऑन, इसी तरह से हमारा गिव अवे जो है वो खत्म हो चुका है। दिल छोटा मत कीजिए, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आपका नंबर फट से हमें मिलना चाहिए या फिर आप ऐसे ही आपकी गिव अवे जीत सकते हैं। उसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ एक धमाकेदार गाने की तरफ।

ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 54 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। विद दैट, लिव फुल्ली, लव पैशनेटली एंड लाफ लाउडली। लेती हूँ आप सबसे बड़ा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। मेरे बाद आने वाले हैं प्रेम, तो आप उनका भी साथ दीजिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए। विद दैट दोस्तों, बाय बाय एंड गुड नाइट।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

welcome, Dallas. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. चुभती जलती गर्मी का मौसम आ चुका है. Oh my God, 98 degrees, यार एकदम तड़तड़ाते रहते रह गए सबके सब. Oh my God, please be hydrated, ladies and gentlemen. If you're going out, make sure you're carrying a bottle of water. यार, this is very very important. And of course, जिन लोगों को मेरी आवाज पहचान में आ चुकी है, दिस इज आरजे प्रेम ब्रिंगिंग द संडे पॉप स्टेशन एवरी संडेज फ्रॉम 8 to 10 ओनली ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. अभी मेरे से पहले आरजे अपूर्वा ने एकदम जबरदस्त एक से बढ़कर एक हिट गाने बजाए. मेरी भी यही इच्छा है, अपेक्षा है और मनोकामना है, जैसा वो कहती है हमेशा. बट एज यू गाइज ऑलरेडी नो द स्टूडियो नंबर 972-235-5555. लेट अस नो योर जैम एंड वी विल प्ले हियर राइट ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. द फर्स्ट आवर इज ऑफकोर्स गोना बी द पॉप सेगमेंट. यहाँ पे हम गाने बजाते हैं फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. तो पहला गाना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ ही गया. I was on the way to the studio and मुझे प्रियंका ने पहले ही बोल दिया कि my song has to be the first. मैंने बोला कौन सा? नाजिया हसन का Boom Boom. So Priyanka, here's your song. Ladies and gentlemen, you can also let us know on social media as well. Prem Joshi Podcast. You can follow us on Instagram, Facebook, YouTube, wherever you want to go. Prem Joshi Podcast. Here we go.

गोतीलो क्या खतरनाक गाना बनाया यार आदित्य गढ़वी ने. थैंक यू सो मच निकेता फॉर रेकमेंडिंग दिस अमेजिंग सॉन्ग. ऐसे ही गाने बरकरार रहे लेडीज एंड जेंटलमैन. 972-235-5555 या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमें डीएम कर सकते हैं. डीएम्स आर ओपन. प्रेम जोशी पॉडकास्ट PREMJOSHI पॉडकास्ट. And you can follow us there because we talk to amazing subject matter experts from immigration, law, healthcare, astrologer, numerologist, finance management. Hum sabhi se baat karte hain yaar. So make sure you follow us there. Next gana hume recommend kiya hai. Again, wow, maine logon ko bola pop songs humko recommend kijiye. लोगों ने हर लैंग्वेज के मुझे रेकमेंड कर रहे हैं. अभी हमने हिंदी गाना बजाया, उसके बाद गुजराती, अभी एक मराठी टच भी आ रहा है. सुंदरी बाय संजू राठौड़. हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू हैवंट.

0: pretty eye, brown, brown. The way you look at me, goddamn. Killer walk, dealer talk, hypnotizing all town, yeah, yeah.
1: सच एन आइकॉनिक सॉन्ग बाय संजू राठौड़। ये गाना बहुत वायरल हो गया यार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आई मीन दो से लेके तीन रील के बाद एक रील में ये गाना आएगा ही आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम। आई होप यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल लेट संडे इवनिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव वंस। इतनी जबरदस्त गर्मी थी, दोपहर को मैं गलती से 5 मिनट के लिए बाहर गया और भाग के वापस घर के अंदर आ गया यार। इट्स इनसेन एंड इट्स जस्ट द स्टार्ट। कैन यू इमेजिन अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा? नहीं, हमारा मोटिव नहीं है ये शो पे आपको डराने का। हमारा शो का मोटिव है कि आपको सब ऑप्टिमिज्म से भर दे, एकदम पॉजिटिविटी से भर दे ये शो से। बिकॉज यू नो संडे नाइट को लोगों का एकदम बत्ती गुल हो जाता है यार। ओ माय गॉश, दैट क्रेजी वीक स्टार्ट, दैट क्रेजी मंडे इज टुमारो। तो उसका टेंशन हम संडे इवनिंग को ही लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये शो चुना है 8 से लेकर 10 बजे तक, जहाँ पे हम ऐसे ज़बरदस्त गाने बजाए कि आप एकदम पॉजिटिव हो जाए आपके वर्क वीक के लिए, राइट? एंड टू मेक इट बेटर यू गॉट कॉल अस एंड लेट अस नो योर जैम। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर, एंड लेट अस नो एंड वी विल ऑल्सो गिव यू अ शाउट आउट। अभी मुझे रितिका ने फोन करके बोला, आपने गुजराती पॉप सॉन्ग बजाया और आपने गुजराती पॉप क्वीन का गाना नहीं बजाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने बोला कौन? तो मैंने बोला फाल्गुनी पाठक का मैंने पायल है छनकाई बजाइए, तब जाके हम समझे कि आपका शो अच्छा है। मैंने बोला यस, योर सॉन्ग इज नेक्स्ट इन लाइन एंड ऑफ कोर्स बाय फाल्गुनी पाठक।

Such an amazing song, and I think this is one of the songs that you can add to the evergreen list. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Sunday Pop Station with Prem. और मेरा दिल आज गार्डन गार्डन हो रहा है, और मेरी ये इच्छा है कि आप सभी में से किसी एक लकी विनर को एक जबरदस्त गिव अवे दूं. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर ग्रैंड स्पॉन्सर देसी मंडी. अगर आप यहाँ पे नहीं गए हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन DFW एरिया. It's in Louisville, Texas. And if you haven't gone, I'm giving you the opportunity to go. Kyunki har Sunday ko ya har Saturday ko or mostly weekend ko sabhi log jaate hai week ki puri grocery karne ke liye. To ye mauka main aapko de raha hu ki whoever plays the world famous Bollywood quiz with us theek 8:30 baje after the commercial break. Everybody knows this in Dallas, right? Ki hum 8:30 baje after the commercial break on Sunday hum hamara Bollywood quiz khelte hai. To is bar जो भी वो बॉलीवुड क्विज जीतेगा उसे मिलेगा एक फुल हैम्पर फिल्ड विथ एसेंशियल ग्रोसरीज फ्रॉम देसी मंडी. जी हाँ, पूरे हफ्ते की ग्रोसरी का टेंशन गया और बॉलीवुड क्विज खेलने का मजा भी आएगा, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट द गिव अवे, इट्स द गेम एज वेल, इट्स एवरीथिंग, इट्स अ टोटल पैकेज. सो मेक श्योर यू ट्यून इन फनेशिया. नेक्स्ट गाना है देखा है ऐसे भी लकी अली.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
4: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
5: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
4: सच में बिल्कुल घर जैसा।
5: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
2: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: Dallas, are you ready? Jabu Times group of publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
9: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

ऑलराइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा हमने प्रॉमिस किया था 10-15 मिनट पहले कि हम हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज खेलेंगे अभी इसी वक्त। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फोन नंबर डायल कर लीजिए 972-235-5555। इस बार हम थोड़ा ऑफ एयर खेलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन बॉलीवुड क्विज, क्योंकि काफी सारे लिसनर्स हैं जिनको सिर्फ गाने सुनने में इंटरेस्टेड है एंड दे ऑफ कोर्स वांट टू प्ले बॉलीवुड क्विज, बट दे कैन कॉल अस ऑन द स्टूडियो लाइन एंड आई विल प्ले विद देम। सो जो भी पहले मुझे कॉल करेगा उसको मैं फटाफट 3 सवाल पूछूंगा और जो झटपट उस 3 सवाल के एकदम फटाफट आंसर दे देगा मेरे को वो जीत जाएगा इस बार का गिव अवे, विच इज फ्रॉम देसी मंडी। A full giveaway is from Desi Mandi, which is based in Louisville, Texas. So call us on the studio line. I'll play with everybody. So jo pehle call karega, uske saath khelunga, fir dusre caller, fir teesre caller, fir chauthe caller. But tab tak hum gaane bajate rahenge, taki log bore na ho. Right, ladies and gentlemen? 972-235-5555. If you want to play the Bollywood quiz, call me right now.

अरे बहुत मजा आ गया यार लोगों से बात करके। ऑफ कोर्स एक ही विनर होता है हमारा, तो इस बार के हमारे गिव अवे है गरिमा शर्मा, जिन्होंने फट फट सारे जवाब दे दिए। और बहुत लोग से मेरी बात भी हुई, ऋचा से बात हुई, प्रशांत से बात हुई, मुकुंद से बात हुई मेरी, बहुत लोगों से बात हुई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नाराज मत होइए, हताश मत होइए, बिकॉज वी डू दिस एवरी सिंगल वीक। जी हाँ, एवरी संडे आफ्टर द 8:30 कमर्शियल ब्रेक वी प्ले दिस बॉलीवुड क्विज राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया, एंड वी आर ओनली एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ आवर अमेजिंग अमेजिंग ग्रैंड स्पॉन्सर्स। और इस हफ्ते के हमारे ग्रैंड स्पॉन्सर थे देसी मंडी। सो हर हफ्ते हमारे स्पॉन्सर्स बदलते रहते हैं, बट ऑफकोर्स उनकी वजह से हम ये सब क्विज खेल पाते हैं और आप सबके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वेर एवर यू वॉन्ट टू फॉलो अस, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI podcast to ensure that we are connected. All right, एक गाना मुझे recommend किया है रंजीत ने, रंजीत who is from Frisco, उन्होंने बोला है where's the party tonight? मैंने बोला कहीं नहीं भैया, संडे की रात है, चुपचाप घर पे जाके सो जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये गाना है यार कैंक का। मैं बोला कैंक क्या होता है ये? कभी अलविदा ना कहना को कैंक कहा जाता था, मुझे तो ये याद भी नहीं है ये बात। बट ऑफकोर्स उसका एक अमेजिंग सॉन्ग है वेयर्स द पार्टी टुनाइट। ऑफकोर्स द म्यूजिशियंस आर शंकर एहसान एंड लॉय, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक। हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगर रंजीत के तरह आपके पास भी गाने हो तो लेट अस नो यार, 972-235-5555 द स्टूडियो का नंबर आपका और मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक। एंड ऑल्सो DMs आर ओपन, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं आप और हमें गाने का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। प्रेम जोशी पॉडकास्ट।

0: such an amazing song. Thank you so much for recommending. Ravi Imports Warehouse ke bare mein baat karna chahta hu. If you're store owners, this one's for you. Ravi Summer's kickoff is back. Mark your calendars for June 3rd, 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's bigger. The entire warehouse turns into a tropical experience. Expect crazy deals, new product launches, and free gifts all day long. Meet vendors, discover bestsellers, and stock up like never before. Ravi Import Warehouse, it's on 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Hame Safi ne recommend kiya hai Zinda Banda from the movie Jawan.
1: बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. वैसे mostly लोग अभी on the way है घर जाने के लिए. Most of the people, some people are doing their last minute grocery shopping for the week. Some people are coming back from their get-togethers, from their dinners, and now are very tensed for their work week. But यार हमारे show का यही motive है कि आपकी सारी थकान, आपका सारा स्ट्रेस निकाल दे हम हमारे गानों से, हमारे बातों से. सो आई होप यू लाइक व्हाटएवर व्हाट वी आर डूइंग. प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एट प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. नेक्स्ट गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना मुझे दिव्या ने रेकमेंड किया. यार ये गाना मुझे कब से, हम 20 साल हो गए मैंने ये गाना नहीं सुना, बट इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, यू नो. एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग इज मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. फन फैक्ट, मैंने मेरे कॉलेज के फंक्शन में मैंने ये गाने पे डांस किया था यार. सो आई हैड परफॉर्म्ड ऑन दिस सॉन्ग. सो दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी बैक दोज अमेजिंग मेमोरीज. NMIMS की वो दुनिया में वापस जाने का मौका मिला मुझे बिकॉज ऑफ यू दिव्या. थैंक यू सो मच. हियर इज योर सॉन्ग.

Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Welcome back. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. नेक्स्ट गाने के पहले मुझे आपको बताना है इस सेगमेंट के हमारे स्पॉन्सर, उनका नाम है एजी फिनटेक्स. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com. नेक्स्ट गाना, अरे वाह, अभी तो ऐसा लग रहा है 90s का अभी सेगमेंट चालू हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी बैक टू बैक 90s के गाने रेकमेंड करते हैं. एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल. बीइंग अ मिलेनियल, आई थिंक द 90s वाज द बेस्ट डेकेड, राइट? ओले ओले फ्रॉम द मूवी ये दिल लगी.

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर हैविंग अ बॉल व्हेन आई एम प्लेइंग ऑल दी सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. अगर आपको भी आ रहा है तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. ऑल राइट, लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस सेगमेंट इज छैया छैया. आई मेक श्योर टू प्ले दैट बिफोर वी गो, बिकॉज वी जस्ट हैव 3 मिनट्स मोर बिफोर वी हेड टू वर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. बट हियर इज योर सॉन्ग ऋत्विक.

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Land today, profit tomorrow.
3: Dallas, are you ready? Java Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
4: हाय गाइस, दिस इज टाइगर श्रॉफ, एंजॉय फन एशिया रेडियो।

0: loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dances.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार, ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कारण
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: आनंद तेरा फोन आया यार।
1: औरत
3: चल चल।

0: Station 1. Oh, 4.9 FM. Dallas got deal.
1: Woo! आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू ट्यून्ड इन टू फन एशिया रेडियो।

एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: रोते काय को हम,

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
2: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: जिद शर्त है हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर। वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

जाने क्या हुआ मिलके

0: छानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: कहीं पे है जिंगल की आवाजें, कहीं पे वो नलके की टप टप है। कहीं पे वो खाली सी खिड़की है,
1: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
0: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
1: कहीं कुछ मुंडेरों

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: हुआ झुमका।
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: Funnasia. Funnasia. Fun for Fun Done.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
3: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
13: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
13: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
14: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
15: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: चिकन बनाना
10: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
13: It's true. हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
14: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
5: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
4: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
5: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
4: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
5: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
4: नंबर बोल जल्दी।
5: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
6: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
7: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
8: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: With over 25 years of lived experience, certified and accredited relationship coach, Aarti Vedula helps individuals, couples, parents and hundreds of happy clients break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti. Helping you thrive from within.
11: Chicken banana?
4: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken.

0: Jab Harry Met Sejal, Shah Rukh Khan and Anushka Sharma. That, ladies and gentlemen, was a cute little track called Beach Beach Mein. We'll take your requests. 972-235-5555 is the number of the studios.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: ब्रेकिंग न्यूज. होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: I've been researching retirement planning.
8: Oh, really? Where?
7: Google, YouTube, a guy on TikTok.
8: Or you could just talk to WealthTactic.
7: What's the difference?
8: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
9: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
10: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
11: Number you're trying to call is busy at the moment. Please try again.

0: Out of those 740 songs, 140 were duets with Mohammed Rafi, and you're listening to one of them. As I end my show for today, Me Too's coming on next. It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
5: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
6: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
9: K2 ड्राइव मतलब?
10: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objectives.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मी टू। आज पहली तारीख ऑफ 2026 जून 2026 और जी हाँ मंडे के साथ शुरुआत हो रही है 1 जून की और हम मेक श्योर करने वाले हैं कि ये शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो। धमाकेदार आई एम नॉट श्योर बिकॉज गर्मी काफ़ी होने वाली है यार, धमाकेदार तो भी हम करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ 1 जून, वी वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट दिस न्यू ब्रांड न्यू मंथ and brand new week on a very happy, positive, good attitude that we want to bring on the airwaves of Funisha Radio. And that is what exactly Shabnam ji was doing with all those wonderful music that she was playing for all of us. Aur saath hi saath kitni information share karti hain yaar, perfect for our morning drive time, kyunki subah hame zarurat hoti hai sari world news ki aur phir hum shuru karte hain din ki. This is Gapshap Gali with me too. We'll continue that and more.

जी हाँ, हमारा और आपका मिलना होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक 10 से लेकर 12:30 बजे तक. एंड बिफोर दैट एंड बियॉन्ड माई शो देर आर सो मेनी आरजेज हु कम एंड एंटरटेन यू. हमारी सबकी कोशिश एक ही होती है कि आप जब ये स्टेशन ट्यून इन करें तो इट फील्स वर्थ वाइल टू यू. तो इसीलिए कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी राइट आफ्टर दिस ट्रैक. लेट्स प्ले इट फॉर सुरेश जो कि ऑफिस जाने जा रहे हैं. And he was telling me, and I know it is hot. अभी इस वक्त पता है आपको temperature 86 already पहुंच चुके हैं हम. It will be in mid 90s. All of that weather details coming in the next segment. सुरेश के लिए पहले ये गाना play कर दिया जाए.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Documents या parcel भेजनी है?
11: हाँ।
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funnacious Radio.

0: थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन. और आप ये करते हैं हर रोज हमारे साथ जो जुड़ते हैं, तो हमारा भी कुछ, हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है, और वो ड्यूटी है कि हम आप तक कुछ प्रोफेशनल एडवाइसेज और टिप्स लेकर आए. क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं मेरे साथ मिस्टर हुसैन पंजवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज जुड़ते हैं, और बड़े आराम से एक लेमन्स लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ ईजी और लेट्स से डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ दे कैन मेक इट ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. ड्रीम होम मॉर्गेज इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स द लोवेस्ट रेट इन रियल एस्टेट अवेलेबल इन योर एरियाज. वेदर ए पर्सन इज ए फर्स्ट टाइम होम बायर या आप कंसोलिडेटिंग आउटस्टैंडिंग, आप कुछ कर रहे हैं ऐसे आउटस्टैंडिंग डेट को कंसोलिडेट करने की कोशिश, रीफाइनेंस करना चाहते हैं अपना घर, या फिर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, ये सारी चीजों के लिए ड्रीम होम मॉर्गेज आपके साथ है, आपके कम्युनिटी को हेल्प करता हुआ. दे हैव बीन डूइंग इट फॉर क्लोज टू 30 इयर्स नाउ, एंड इट इज माय प्लेजर टू होस्ट मिस्टर हुसैन पंचवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स वेलकम हिम ऑन एयर एंड देन शेयर द नंबर एंड द वेबसाइट एज वेल. सो गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम. क्या हाल चाल है आपके?
1: गुड मॉर्निंग मिठू जी, आई एम डूइंग ग्रेट. आप कैसे हो? आई होप ऑल योर लिसनर्स आर डूइंग ग्रेट. ऑफ कोर्स व्हेन दे आर लिसनिंग टू यू दे मस्ट बी फीलिंग ग्रेट.
0: वेल थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील सो गुड, थैंक यू. और जब भी मैं हुसैन साहब को कॉल करती हूँ क्या हालचाल है, जब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कभी खुशी कभी गम. आप कितने लोगों के गम दूर करते हैं आपको पता है? तो आपकी लाइफ में आई एम श्योर सबके ब्लेसिंग्स हैं, खुशी ही खुशी होगी आई एम श्योर.
1: ब्लेसिंग्स, वी वर जस्ट टॉकिंग द अदर डे एंड यू नो वी वर जस्ट टॉकिंग के जस्ट परचेजेस, फॉरगेट रीफाइनेंसिंग, अल्लाह का शुक्र है
0: जी,
1: मोर देन 2500 होम्स, 2000 होम्स हमने फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हेल्प किया है over a period of last 20-25 years.
0: That's
1: so
0: crazy.
1: You know, it gives you a great feeling jab bhi aapko clients milte hain and they, you meet them at a get together and say, you know Hussain bhai, 20 years ago I bought my first house from you.
0: Wow.
1: So it gives you a different feeling altogether.
0: I am so sure, and therefore for the listeners who want to buy their own home ya fir real estate mein kuch karna chahte hain ya secondary investment mein kuch plan kar rahe hain, to 972-245-5626 is that number. dreamhomemortgage.com inki website hai, zarur jayega. So much of information, and I always tell you ki aap baat kare inke sath and get a feel of it. Jab website cannot do justice to what they actually can do for you. You need to get that vibe by speaking to them. तो आप अभी बात कर रहे थे ना कि इतने हजारों families को आपने help किया. मैं आपसे जानना चाहती हूँ on a very human level कि after you know close to 3 decades in the business, what is the most rewarding part of closing day for you?
1: You know, I'll be very honest. जहाँ clients के पैसे लगे होते हैं and जी. They have gone to another borrower and then another bank, and for some reason unki loan wahan nahi ho rahi
0: ji,
1: and you know, and sometimes because we have 17-18 banks and then we fund our own portfolio loans, so kabhi kabhi creative financing ke we can get the loan done 7 to 10 days, and then they are so thankful especially those ones that are first time home buyers.
0: जी,
1: yeah. उनकी जब भी funding होती है जो वो appreciate करते हैं और जो उनके मुँह पे एक you know it's a different feeling.
0: It's a priceless smile that you satisfaction, happiness all combined in that one smile, right?
1: Yeah, वो उनका जो call आता है कि हुसैन भाई, 2 weeks ago we had lost hopes and then you got it done. Thank you so much. You know, वो जो आपको एक feeling आती है ना. And I'm not trying to be filmy or something, but that's an actual truth. कि वो अलग ही एक feeling है. You know, business is business, yes.
0: Yes.
1: But वो एक feeling is different. It's at a different level.
0: I am so sure. तो थोड़ी सी और smiles हम लोगों के चेहरे पर लेकर आते हैं. Let's talk about you know the quarterly program and it is called down payment assistance program. Let's talk about
1: that. Yeah, it's good. So I'm glad you. Me too, I'm impressed. top of the game, you're too impressive.
0: Not bad, no? Seekh rahi hu, sir, aap se.
1: You caught me off guard, but I'm impressed. Abhi to thakkar sahab ko call karke aapki tareef karna padega. Pehle to aap mujhe force karte the ki tareef karo, jhooti tareef karo, lekin abhi to aapko karna hi padega.
0: Bilkul, sir ji, seekh rahi hu aap se.
1: Nahi, sir, yeah, I'm glad you brought that up. It's June. Again, those funds will be available first week of July.
0: Okay.
1: And the beauty is $25,000 of free money. But the magic word is you have to qualify for it.
0: Right.
1: और कोई ऐसा नहीं कि कोई अलादीन का कोई एक मैजिक वॉन्ड है कि हमें फिराएंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे या इफ यू नो हुसैन स्पेशल फेवर्स है ऐसा कुछ नहीं है. देर आर टू थ्री चेक बॉक्सेस. इफ यू क्वालिफाई इफ यू फिट अंडर दैट यू क्वालिफाई फॉर द लोन. बट हमारी टाइमिंग वी हैव टू मेक श्योर वी सबमिट फॉर दैट लोन फर्स्ट पार्ट ऑफ जुलाई बिकॉज लास्ट टू क्वार्टर्स दे रैन आउट ऑफ फंड्स विद इन द फर्स्ट 10 to 12 डेज. So it's always all these funds are first come first basis.
0: जी.
1: So आपके लिए but अगर आप first time home buyer, you know अगर आपके पास I'll just give a generic example, family of four making less than 76,000 to 78,000, you have a good chance of getting this grant.
0: Okay.
1: So you have to be a first time home buyer. आपकी median household income, not borrower's income. Has to be based on the county, whatever the income level is. Again, there is a, it's all public record, so we can show you that chart and let you know whether you qualify for that. And you have to be buying your primary residence and first-time home buyer, meaning आप last 3 साल में कोई घर नहीं own करते हो. ऐसा नहीं कि आपके husband के नाम पे है या wife के नाम पे घर है तो now you can buy another house. It does not work that way.
0: Okay.
1: It has to be your first-time home buyer, or you or your husband shouldn't spouse. Or partner should not have owned a home in last 3 years. So if you qualify, then we make sure you find a house, and then by June, by end of June, we get your loan approved. So now you are ready to submit for that grant. And $25,000 of free money, why not?
0: Absolutely, yeah.
1: Or so if you have any doubts, any questions. You guys can always call me. The consultation is absolutely free, absolutely free. And I'll request all your listeners, even if they have any credit challenges, kuch credit issues, call us. The consultation is free. Agar aap homeowner ho aur aapke credit card bhi kaafi, and me too, the reason I bring this up, because I'm seeing now a pattern where every week there will be a client who's already behind on the payment, and then they contact us. So, wo kya hota hai? Then we cannot help them. And then they get upset, they get frustrated.
0: Yeah.
1: But I could have helped that guy two months ago.
0: Correct, yeah.
1: So, don't be reactive. Be proactive. Matlab ke agar aapko lagta hai, aap ek homeowner ho, aapko credit card ke kaafi debt se, every week aap struggle kar rahe ho, every paycheck aap struggle kar rahe ho, if you are a business owner, business ke funds leke aap personal paise de rahe ho, credit card chad gaye hai, you know, all business, kaafi businesses pehle se slow ho gaye hai, and you want to get cash out on your home, don't fall behind on the payment and then call us. Pehle call kijiye, the consultation is free, even if you have some credit issues, call us. We might be able to help you. If we cannot, I promise you, I'll give you some advice. I'll try to at least guide you what you can do for next 3 months or 6 months. And then we can definitely be able to get your cash out loan. If not now, later on.
0: Exactly. And because this is a quarterly program, if not this quarter, they can make it into the next quarter with all the preparation. Yeah.
1: That is for homeowners if you're planning to buy a house.
0: Yeah.
1: और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है, अगर आपको वो ग्रांट चाहिए, सो यस अगेन फॉर दैट आल्सो दिस वुड बी द बेस्ट टाइम टू कॉल अस सो वी कैन सेट अप गाइड यू कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स यू कैन फाइंड अ होम एंड गेट द लोन अप्रूव्ड एंड देन अप्लाई फॉर द ग्रांट. इट्स $25,000 एंड द ग्रांट इज नाउ अवेलेबल ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स इन एवरी स्टेट. But the grant amount is different. In Texas, it can go up to $25,000. So every state has a different amount.
0: Yeah, that's an incredible amount towards your first home. Yeah, I mean, credit score jo hota hai, wo time to time check karte rehna chahiye, in my opinion. Because kabhi aap jab major kuch karne wale hote ho, and then there you find this roadblock ki maybe aapka credit score nahi kar raha hai, sahi nahi hai, and you have to really go that route of taking care of it, and that's where you come into picture. But isn't it a great idea to keep a track of your credit score time to time?
1: There are a lot of websites there where at least you will know कि आपके credit कौन से direction में है.
0: जी.
1: I mean, जो mortgage report होता है और जो आप consumer report देखते हो, उसपे scores are different. But at least you will know where you stand. And you made a very valid point. lot of banks, credit card companies, they give you that option of free monitoring of your credit. Achha. They give you your credit score. I know Wells Fargo has it, Discover Card has it, American Express has it, Bank. So you can check your, Chase Bank has it. आप जहाँ के उनकी वेबसाइट पे इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट यू कैन चेक योर क्रेडिट स्कोर एंड अगर आपके क्रेडिट में कोई इश्यूज है यू कैन कॉल अस वी कैन गाइड यू टू बिल्ड योर क्रेडिट टू यू नो ब्रिंग योर स्कोर्स अप एंड देन यू कैन बाय अ हाउस बट यू हैव टू मेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जैसा मीटू ने कहा नॉट ओनली फॉर द ग्रांट बट फॉर इट बींग द बायर्स मार्केट राइट नाउ तो डेफिनेटली आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप ये टाइमिंग राइट रख तो ये मौके का फायदा उठाते हो
0: जी एंड समर्स इज द की टाइम फॉर पीपल टू बाय होम एंड शिफ्ट ड्यूरिंग द समर वेकेशन सो दैट द न्यू स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल ऑफ दैट यू नो इज टेकन केयर ऑफ
1: 100% मैम और दैट्स व्हाई वी टेल क्लाइंट्स के राइट नाउ स्पेशली अभी समर अप्रोच हो रहा है तो इन्वेंट्री लेवल इज हाई इट इज बायर्स मार्केट
0: जी
1: सो एंड देन दिस ग्रांट इज कमिंग अप सो एवरीथिंग यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट
0: तो अभी इंटरेस्ट रेट क्या है हुसैन साहब
1: बॉल पार्क सी भी तो देयर इज अ वेरी मींस इट्स एवरी क्लाइंट विल हैव अ डिफरेंट रेट राइट क्वालिफाई फॉर अ डिफरेंट रेट बट लेट्स से सिंस यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन आई डोंट वांट टू डॉज दैट आंसर अगर आपका 780 स्कोर है यू आर पुटिंग 5% डाउन कन्वेंशनल लोन पे हम जाते हैं फुल डॉक है आपकी इनकम वेरिफिकेशन एवरीथिंग यू क्वालिफाई देन यू वुड गेट अ रेट ऑफ अराउंड 6.25 APR वुड बी अराउंड 6.37 for 30 year fixed.
0: Okay.
1: And all the rates I quote on air are without any points.
0: All right. Got it, sir. So we have just under a minute left. Final words that you would like to tell our listeners and
1: one last thing. If I have one minute left for home for self-employed borrowers, also we have some great programs out there. जहां हम आपके टैक्स रिटर्न्स को डिसरिगार्ड करते हैं एंड देन फॉर इन्वेस्टर्स इफ यू प्लानिंग टू बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड यू वांट टू गेट कैश आउट ऑन योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वी हैव सम प्रोग्राम्स वेयर वी डोंट नीड एनी टैक्स रिटर्न्स एट ऑल टू बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट वी हैव इन हाउस एजेंट्स हु कैन हेल्प यू टू फाइंड योर ड्रीम होम यू कैन कॉल अस एट 972-245-5626 or email us at info@dreamhomemortgage.com.
0: It is always a pleasure to have you, Hussain Saab, on the airwaves of Fanisha Radio 104.9 FM. The incredible insight that you bring. We are really thankful for that. Thank you so much for your
1: time. Thank you, Mitu. I really, really enjoy doing interview with you and Kiran. You're always, always bring out the best in me, so I appreciate that.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
5: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693474401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और बालिन में उपलब्ध
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana?
5: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 15 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
12: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio. Love.

Happy first day of June and meteorological summer to all of you listening to Funny Jar Radio 104.9 FM. ये है गपशप गली with me too. और आज का तापमान बताते चलते हैं. वैसे डैलस का तापमान वैसे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है as we approach the FIFA World Cup of 14 June. से यहाँ पे जो धमाका होगा, इसीलिए इस सेगमेंट में मैं FIFA न्यूज लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. लेकिन पहले टेम्परेचर के बारे में बात कर ली जाए, मौसम के बारे में बात कर ली जाए. हीट इंडेक्स expected to reach triple digits across North Texas. जी हाँ, mid to high 90s that we are going to have. लेकिन वो feel जो होगा heat index के कारण, it will feel like above 100 degrees into the afternoon hours. So ये आप जान लीजिए और मान लीजिए कि यार गर्मी आ चुकी है और आप Dallas में रहते हो, इसका कोई escape नहीं है. Now that being said, let's remind you also कि outdoor activities सोच समझ के कीजिएगा. And the first few days ना हमें थोड़ा सा ट्यून इन करने में भी वक्त लगता है. बाकी फिर समर्स, जब पीक समर्स आ जाते हैं, हमें पता होता है कि पानी भी ज़्यादा पीना है, यू नो, कपड़े हल्के पहनो या यू नो कैप वगैरह, सनस्क्रीन, ऑल द होल नाइन यार्ड्स, लेट्स से, ठीक है ना. लेकिन जब वो शुरुआत के दिनों में ना हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते, ना मेंटली ना फिजिकली. सो गेट योर सेल्फ रेडी फॉर दिस हॉट डे दैट यू गोइंग टू फील टुडे. सो कुछ आइसोलेटेड शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स पॉसिबल है लेट आफ्टरनून आवर्स में और कुछ ही एरियाज में. एवरी अदर प्लेस इज गोइंग टू स्टे ड्राई मोस्टली. और एयर क्वालिटी अलर्ट है, ओजोन एक्शन डे है, इट इज़ इन इफेक्ट इन डैलस फोर्ट वर्थ, जस्ट रिमेंबर दैट. एंड दिस वीक डज ब्रिंग ए रिटर्न ऑफ डेली स्टॉर्म चांसेस विथ सर्जिंग गल्फ मॉइस्चर एंड अपर लेवल डिस्टर्बेंसेज बाय टुमारो, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो द ओवरऑल कवरेज विल बी स्पॉटी, सो नॉट एवरीवन इज गोइंग टू सी द स्टॉर्म. और हाइज हमारे मिड 80s टू लोअर 90s के बीच रहेंगे और हीट इंडेक्स हमारा मिड 90s में डेफिनेटली रहेगा. आज इट इज़ गोइंग टू फील मोर लाइक 100 प्लस डिग्रीज. सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू फनी जर रेडियो. वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. टुडेज हाई अराउंड 96, लो अराउंड 77. टुमारोज हाई अराउंड 94 विद अ लो ऑफ 77. और टेम्परेचर धीरे धीरे एक आध डिग्री करके कम होगा. लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, हीट इंडेक्स इज गोइंग टू बी इन एक्शन. अच्छा, एक्शन जो शुरू होने वाला है, फीफा एक्शन जो शुरू होने वाला है, उसी के चलते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई चैंपियंस को जो ट्रॉफी मिलती है ना, इन्हें अपने पास रखने का मौका नहीं मिलता है. यू नो दैट? डिड यू नो दैट? द सीक्रेट ऑफ दैट आइकॉनिक ट्रॉफी, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दैट, कि वो ट्रॉफी एक्चुअली कहाँ रहता है. चलिए, लेट्स गेट इनटू दिस गाना एंड देन वी विल कम बैक विद दैट.

9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है एंड दिस इज द फीफा सेगमेंट दैट आई ब्रिंग फॉर यू. इन दिस सेगमेंट फीफा का जो नशा अडालस में दिख रहा है जगह जगह पे, उसी को हम पूरा बटोर के पूरी एनर्जी के साथ सारा जो डिटेल्स शेयर करते हैं. इट विल गेट यू रेडी फॉर द मोस्ट अमेजिंग गेम दैट यू गोइंग टू वॉच, गेम्स दैट यू गोइंग टू वॉच फ्रॉम June 14th राइट हियर इन डैलस स्टेडियम. सो लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी, द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी. अब करंट जो चैंपियंस हैं वो है अर्जेंटीना, जिनको तीन बार टाइटल्स उन्होंने जीता है. उरुग्वे और फ्रांस ने दो बार, और इंग्लैंड एंड स्पेन हैव वन ईच. चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, स्वीडन, नेदरलैंड्स, क्रोएशिया, ये सब फाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं वो ट्रॉफी, दैट फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी. सो लेट्स टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, कंसिडरिंग कि ये इतना प्रेशियस होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इनको घर ले जाने को, चैंपियंस को घर ले जाने को नहीं मिलती है ये ट्रॉफी. सो दिस इज ए सीक्रेट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप. नाउ द वर्ल्ड कप ट्रॉफी इज परमानेंटली केप्ट एट द फीफा म्यूजियम इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड. डिड यू नो अबाउट दिस? मुझे तो नहीं पता था. अब क्या है ना कि ऑफिशियल फीफा रेगुलेशंस के हिसाब से जो असली और ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो परमानेंटली जो ज्यूरिक में रखी हुई है, इट इज मेड ऑफ 18 कैरेट सॉलिड गोल्ड एंड वेइंग ओवर 6 kgs. द ओरिजिनल ट्रॉफी इज इनक्रेडिबली वैल्यूएबल और इसीलिए वो सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी अपने होम में रहता है इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, और रेयरली वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है. वेल, इट ओनली ट्रैवल्स फॉर ऑफिशियल इवेंट्स लाइक द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर, द ओपनिंग मैच एंड द ग्रैंड फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट. बेसिकली सेइंग आफ्टर द फाइनल विसल, जब गेम ख़त्म होता है और एक विनिंग टीम को ट्रॉफी दी जाती है, दैट्स द ओनली टाइम दैट द रियल गोल्ड ट्रॉफी इज इन द हैंड्स ऑफ द चैम्पियन, बट दे डोंट गेट टू कीप इट. दैट्स राइट. इंस्टेड ये होता है कि फीफा उस असली ट्रॉफी को तुरंत अपने वापस ज्यूरिक म्यूजियम में सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जगह पे भेज देती है, और चैंपियंस को मिलता है एक गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज रेप्लिका जिसे विनर्स ट्रॉफी कहा जाता है. आई थॉट आई विल ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं फनेशा रेडियो 104.9 FM से, और हम तो यार मतलब ढूंढ ढूंढ के इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, विच विल बी मीनिंगफुल फॉर यू, विच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग फॉर यू. लेट्स लिसन टू हंसिका पारिक, ब्यूटीफुल वॉइस. हाँ,

वांट टू मेक श्योर आप सबको पता है अबाउट टेक्सास प्राइमरी केयर. आपको पता होना चाहिए कि 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर प्राउडली सर्व कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को. एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम और सेकंड लोकेशन फ्रिस्को में जो है

0: टेक्सस प्राइमरी केयर, आपको पता होना चाहिए कि 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर प्राउडली सर्व कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विथ अ ब्रांड न्यू नेम और सेकेंड लोकेशन फ्रिस्को में जो है, और वो लोकेशन जो है इट दे आर इंट्रोड्यूसिंग लूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लेडीज एंड जेंटलमैन, लूनॉक्सी मेडिकल जो कि प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, डायग्नोस्टिक्स, कार्डिक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ये सारी एक ही छत के नीचे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं. ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, कोई अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं है. लूनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को, डू चेक आउट.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM, HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM, HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent.

आयुष्मान खुराना इन दैट वन, एक और गाना जो जिसमें आयुष्मान खुराना थे एंड द टॉपिक वाज समथिंग टू डू विद LGBTQ. यस, यू गेस्ट इट राइट, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, दैट फिल्म दैट आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फ्रॉम. और ये स्पेशली इसलिए क्योंकि ये मंथ जो है आज, क्योंकि पहली तारीख है जून की, जून इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज प्राइड मंथ ऑनरिंग द हिस्टोरिक 1969 स्टोन वॉल अपराइजिंग इन न्यूयॉर्क सिटी. और इसी को सेलिब्रेट किया जाएगा ये पूरे महीने, जो कि आप गूगल डूडल में भी शायद देख रहे होंगे. एंड देन विकिपीडिया पेज ऑल्सो हैज़ सम इंटरेस्टिंग एक्चुअली कैंपेन गोइंग ऑन देयर, जो कि LGBTQ जो रिलेटेड कॉन्टेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये एनकरेज किया जा रहा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, वेल विकिपीडिया पे जाएंगे तो यू विल गेट द लिंक एंड एवरीथिंग एंड हाउ टू डू इट एंड मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन, द राइट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द राइट वे. दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन सेलिब्रेटिंग द प्राइड मंथ. और इसका ओरिजिन जैसे कि मैंने कहा कि स्टोन वॉल राइट्स से हुआ था. द मंथ कमेमोरेट्स द स्टोन वॉल राइट्स, जो शुरू हुआ था June 28th को 1969 में, ए पिवटल कैटलिस्ट फॉर द मॉडर्न गे लिबरेशन मूवमेंट. और इसी के चलते इस फिल्म का ये गाना बनता है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एक चीज जो कभी काफी नहीं होता है और वो है हमारी ग्रोसरी नीड्स, और उसके लिए इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ लोकेशन जो है वो आपके लिए गिव अवे लेकर आ रही है, स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर टू वन ऑफ यू अगर आप मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा बनते हैं आप, क्योंकि हमने प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया तो एक और चीज सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, एंड इट इज June 1st विच सेलिब्रेट्स वर्ल्ड मिल्क डे. दैट्स राइट, ये एस्टैब्लिश किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशंस, और ये आज के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. और फिर भी देखिए ना कि हमारे ज़माने में दूध जैसे हमें सप्लाई किया जाता था, यानी कि दूध वाला जो होता था वो ऑब्सोलीट प्रोफेशन हो गया है, लेकिन दूध आज भी लोग अब बड़े प्यार से पीते हैं. आप लोगों के लिए एक सवाल आ रहा है, तो इसलिए स्टूडियो का नंबर ज़रा हैंडी रखें आप, 9722355555, एंड दैट गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार इज़ फॉर वन ऑफ यू. तो तैयार हो जाए मेरे सवाल के लिए. लेकिन मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये इसका एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस है. सी, डेयरी सपोर्ट्स द लाइवलीहुड्स ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर मोर देन 6 बिलियन पीपल. तो इसकी जो अहमियत है, दैट इज वॉट इट ब्रिंग्स, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू हम जानते हैं कि रिच सोर्स है ये, हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिंस लाइक B12 एंड डी, ये सारा जो अपने बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इम्यून फंक्शन के लिए ज़रूरी है. तो मिल्क हमारे लिए वो कमाल की चीज़ है, और आज का दिन मिल्क सेलिब्रेट करता है, तो हम भी क्यों ना सेलिब्रेट करें आपके साथ ये वर्ल्ड मिल्क डे विथ ए सिंपल क्वेश्चन. बचपन में या अभी भी अगर आप वो कुछ अगर दूध में मिलाकर पीते हैं, यानी कि दैट मिल्क मिक्स, यू नो दैट मेक्स योर मिल्क इवन मोर टेस्टी, वो क्या था या क्या है? दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो. सिंपल, कहती हूँ ना कि मेरे इन सवालों का ना कोई सही या गलत जवाब है, बस आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, आपसे बस बातचीत करने का ये टॉपिक आज वर्ल्ड मिल्क डे पे. हाउ अबाउट दैट, 9722355555. दूध पर एक ये गाना बना था दूध को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बच्चे इतना आनाकानी करते हैं ना दूध पीने के लिए, कई बार कुछ बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मेजॉरिटी पीपल डोंट लाइक. तो कभी कभी माँ बाप ना उसमें कुछ मिला मुलू के देते हैं टू मेक इट इवन मोर टेस्टियर सो दैट दे ड्रिंक इट. तो दूध पे ये एक मिनट का गाना हो जाए और उसके बाद लेते हैं

0: One of the most amazing and iconic television campaign of all time for milk. And बच्चों को थोड़ा सा और encourage करने के लिए कि दूध कितना जरूरी है बच्चों को और बड़ों को. Let's get you on air because मेरा एक simple सा सवाल है कि what was that milk mix that you have been adding for you, yourself or your kids, you know, कि बच्चे दूध पिए और मजे से पिए. You are live on air.
1: हाय, तो मेरा नाम बंदे नहीं है. एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम लोग तो बॉर्नविटा मिला के पिया करते थे.
0: यहाँ पे भी बॉर्नविटा मिलता है राइट. आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉर्नविटा यार. आई एब्सोल्युटली लव बॉर्नविटा. आप अभी भी दूध पीते हो?
1: ऐसे ही जस्ट ऐसे ही स्पून भरकर और ऐसे ही खा लिया करते थे.
0: एग्जैक्टली, दूध में मिलाने के पहले एक चम्मच और दूध में मिलाने के बाद एक चम्मच तो फांके लेते थे हम लोग. हाँ, व्हाट्स योर नेम?
1: वंदनी.
0: वंदनी, थैंक यू सो मच वंदनी. एंड आई एम पुटिंग योर नेम हियर बिकॉज यू टोल्ड मी अबाउट बॉर्नविटा. लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अदर पीपल हियर. ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला शो नहीं है, लेकिन हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि आप दूध में क्या मिला के पीना पसंद करते थे या पसंद करते हो. यू आर लाइव ऑन एयर.
2: हाय, मेरा नाम संदीप है.
0: संदीप, बताइए
2: जी, दूध में मिलाने वाली तीन चीजें हैं जो मैं बचपन से कर रहा हूँ, वो बताना चाहूंगा आपको.
0: जी बिल्कुल.
2: तो सबसे पहले, अगर मुझे खाना पसंद नहीं होता तो मेरी माँ दूध में शक्कर मिला के दूध और रोटी खिलाती थी.
0: हाँ बिल्कुल.
2: ये पहला. दूसरा, जब मैं स्कूल में गया तो मेरे दोस्त यार सब बॉर्नविटा डाल के पीते थे, तो फिर बॉर्नविटा वो ट्राई करना था, तो वो एक चीज हो गई.
0: हाँ बिल्कुल.
2: और जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरी माँ दूध में हल्दी डाल के पिला देती थी.
0: क्या बात है संदीप, क्या बात है. आई एम श्योर कितने लोगों की मेमोरीज आपने ताजा कर दी हैं यार. माए जो है ना, दे हैव फाउंड डिफरेंट वेज टू मेक श्योर कि जो चाहिए उनके बच्चों को खाना चाहिए वो कैसे भी खिला जरूर देते, खिला या पिला जरूर देते थे, है ना. थैंक यू सो मच संदीप. आई लव द टिप्स दैट यू गेव अस हियर. मतलब ये ना हल्दी वाला दूध इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू राइट. सर्दी जुकाम हो या कुछ पेन हो, कुछ भी इन्फ्लेमेशन, ऑल ऑफ दैट इज सो गुड फॉर यू. थैंक यू संदीप, रियली लाइक योर आंसर हियर. तो कीप लिसनिंग. किसी एक के नाम करने वाले इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ का ये जो ग्रोसरी हैम्पर है, लेकिन यू नो वॉट, मैं एक गाने की तरफ जाने वाली हूँ, उसके बाद वापस आके आपके कॉल्स लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेना, ठीक है. इट इज वर्ल्ड मिल्क डे एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेलिब्रेटिंग हियर.
3: गुड मॉर्निंग मिठू जी.

0: इट इज योर चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड मिल्क डे सेगमेंट, क्योंकि हम दूध के बारे में बात करें कि बचपन में दूध में आप क्या मिला के पीते थे या अब भी जो आपको बेहद पसंद है. एंड इट इज वर्ल्ड मिल्क डे, तो यहाँ पे अमूल की बात ना करूं इंडिया से ये तो मुमकिन ही नहीं है यार. गुजरात के एक छोटे से शहर में ना एक मिडलमैन कह लें एक कंपनी होती थी, पोल्सन डेयरी, और वो कंपनी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी. कैसे? वो ऐसे कि वो सस्ते में दूध देती लेती थी उनसे, और दे यूज टू सेल एट अ मच हायर प्राइस. तो फार्मर्स जो हैं बड़े परेशान थे, ऑब्वियसली गरीबी में हालत खराब इनकी. तो ये गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, एंड ही सजेस्टेड टू स्टार्ट दिस कोऑपरेटिव मॉडल रिमूविंग द मिडल मैन कंप्लीटली. तो द गोल्डन ट्रियो इनके बारे में कहना चाहती हूँ, वल्लभ भाई पटेल, साथ में वर्गीज कुरियन एक डेयरी इंजीनियर थे जिनको इवेंचुअली जनरल मैनेजर का खिताब मिला, एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, दैट इज द मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया. और साथ में थे एक और सज्जन, एक और जेंटलमैन जिनका नाम है दलाया, और वो एक गेम चेंजर, टेक्निकल गेम चेंजर बने इस वाइट रेवोल्यूशन में. एंड एचएम दलाया हु अचीव्ड ए ग्लोबल ब्रेक थ्रू बाय मेकिंग स्किम मिल्क पाउडर फ्रॉम बफेलो मिल्क, व्हिच इंटरनेशनल एक्सपर्ट सेड वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. 1946 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1946 में 432 फार्मर्स केम टुगेदर, दो विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अप्रॉक्सीमेटली 247 लीटर्स मिल्क से इसकी शुरुआत हुई, जो आज की तारीख में इट इज ए 35,000 करोड़ एम्पायर दैट वी मस्ट ऑल नो. वी आर टॉकिंग अबाउट अमूल, विच केम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अमूल्य, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए कोऑपरेटिव मॉडल कैन एक्चुअली बीट जायंट्स. और क्या जानते हैं आप कि अमूल जो है इट इज़ रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बाद थर्ड नंबर पे आता है, एंड इट holds the distinction of being the only fast moving consumer goods that is FMCG brand to break into the top 3. How amazing is that? And isi ke chalte ek film bani thi Manthan, which starred Girish Karnad, and it was Smita Patil's film, aur usme ek gana tha Preeti Sagar ka, which got a makeover sorts in 2012, if I am not wrong. Let's take this last caller on air. Or India Bazaar ki taraf se jisko milne wala hai, batati hu main. You are live on air.
1: This message has been transcribed.
0: Well, I don't think I want that message right now. I want my callers, my listeners here. Fun Asia Radio, you are live on air. Batai.
2: Yes.
0: Yes, kya milaya
2: jaye? Can you hear me?
0: Yes, crystal clear, bataye.
2: Yeah, so when we were growing up, of course, milk was the main morning course.
0: Yes.
2: And then we grew up with bournvita, and now bournvita plus haldi also.
0: Yes, absolutely. Haldi and bournvita that Sandeep spoke about. Sir, kya naam hai aapka?
2: Dinesh.
0: Dinesh, thank you very much for your call. Really appreciate. Ek aakhri caller aur phir chalte hain us gaane ki taraf jiski main baat kar rahi thi. You are live on air.
3: Mithu ji, good morning.
0: Good morning, Khan sahab. Bataiye.
3: Jab bhi Punjab mein mehman aate hain to doodh mein 7-Up mix karte hain aur unko pilate hain. Aur Canada mein Coke mix karke log peete hain.
0: Kya baat kar rahe hain? Coke doodh mein? Ye mujhe nahi pata tha.
3: सच्ची? पूरे कनाडा में और एक रेस्टोरेंट है यहाँ अमेरिका में वो भी
0: कोक और दूध. अच्छा, ये तो ट्राई करना पड़ेगा, मतलब रेसिपी देखनी पड़ेगी कि क्या बनता है. आई एम जस्ट क्यूरियस द टेस्ट ऑफ द टेस्ट. वेल, थैंक यू खान साहब.
3: नहीं, पंजाब में मेहमान आते हैं, 7-Up की बोतल दूध के साथ मिक्स कर देते हैं मेहमान को, आइस डाल के.
0: क्या बात है. और हमारे जितने भी शेक्स बनते हैं दूध के बिना कहाँ बन सकता है. तो आज वर्ल्ड मिल्क डे पर दूध का एक गिलास तो बनता है. और हैशटैग वर्ल्ड मिल्क डे या डेयरी आप करके, वर्ल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स करके, आप चाहे तो अपने सोशल मीडिया पर भी हिस्सा बने ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. संदीप, गिव मी अ कॉल. इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. एंड लेट्स डाइव इन टू दैट अमूल सॉन्ग, अमूल मंथन, which was redone in the voice of Sunidhi Chauhan.

0: Yes, enjoy dairy. Hashtag enjoy dairy. Or you can do it with hashtag World Milk Day and share your milk story on social media platform. This is Gupshup Gali with Me Too. दूध के बारे में हमने बहुत सारी बात की क्योंकि आज वर्ल्ड मिल्क डे है, लेडीज एंड जेंटलमैन. बस एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ. इस ब्रेक पे चाहे आप दूध पियो या दूध डालकर अच्छी सी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बनाओ आप. जो भी करो आप वापस जरूर आइएगा बिकॉज यू आर जस्ट एट द राइट प्लेस. इट इज फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलती हूँ और कुछ और बातें, एक और गिव अवे जो मेरे पास आपके लिए है. सुनते रहे. ऑलराइट,
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Are you seeking clarity in life, wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
4: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: And that was Aamir Khan and Sonali Bendre in that song, and that reminded me of reminding you all ki ek film hai ki web series, it is a series and it is called Raakh, jisme Sonali Bendre ke saath Ali Fazal is going to play a very important role. Just remember that it is a series jo ki aane wali hai mere khayal se Prime Video pe. Yes, June 12th ko ye new series start hone wala hai, and it is a murder mystery. Intense trailer hai iska, agar aapne agar dekha ho to. Rakesh Bedi also once again after धुरंधर में, जो धुरंधर काम किया उसके बाद, इस सीरीज में हम उनको देखने वाले हैं, और आमिर बशीर इन लीड रोल आल्सो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इंटेंस होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली वन हैज टू वॉच आउट फॉर दिस वन. सो प्लेंटी इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस इन द मंथ ऑफ जून. बहुत सारी और सीरीज एंड मूवीज रिलीज हो रही हैं, उनमें से कुछ और का नाम और के नाम बताऊंगी मैं आपको, लेकिन इस गाने के बाद लेट्स गेट यू दिस गाना ऑन गपशप गली विथ मी टू.

वंस अगेन यू ट्यून इन टू फनी शो रेडियो 104.9 FM. आने वाले कुछ मूवीज और सीरीज के बारे में बात करने वाली थी. एक के बारे में तो मैंने बता दिया, राख, जो कि जून 12th को Amazon Prime पे स्ट्रीम होना शुरू होने वाली है. इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट मोर वेब सीरीज दैट आर कमिंग आवर वे. एक है सतरंगी बदली का खेल, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन Z5. एक रूरल एक्शन ड्रामा सीरीज होने वाला है ये, और अपेरेंटली काफी ग्रिपिंग होगा. ए सागा ऑफ रिवेंज, और ये सेट है, बैकड्रॉप होने वाला है उत्तर प्रदेश का. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज कर्तव्य, ए न्यू ओरिजिनल थ्रिलर सीरीज स्टारिंग सैफ अली खान, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये रिसेंटली रिलीज हुई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैच ऑल्सो ऑन नेटफ्लिक्स. कर्तव्य, जो कि है सैफ अली खान की ये थ्रिलर सीरीज, जो आप देख सकते हो. एंड ही इज डूइंग वंडर्स ऑन यू नो OTT प्लेटफॉर्म. वी रिमेंबर द सीक्रेट गेम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस वन. और फिलहाल ये गाना मैं आप लोगों के लिए लगाने वाली हूँ, और आप मुझे बताने वाले हो द मिसिंग लाइन इस गाने के अंदर, ठीक है? सो लेट्स गेट यू दिस गाना एंड देन म्यूट वन ऑफ द लाइन्स फ्रॉम दिस सॉन्ग, और उसके बाद आप मुझे कॉल करके बताने वाले हो कि वो मिसिंग लाइन जो है वो क्या है. और अगर आप मुझे बताते हो तो मैं आपको देने वाली हूँ इस हॉट से गाने के लिए, हॉट से रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे है. एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी क्यूरियस कि क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, यहाँ से कुछ भी मिल जाए इट इज़ गोइंग टू बी ओनली सोने पे सुहागा, क्योंकि वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें जब आप ऑर्डर करोगी, एक चीज़ आपको फ्री मिल सकती है, वो है ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न, और यू कैन गो फॉर बटर चिकन. देयर डैलस इज बेस्ट बटर चिकन दैट यू कैन गेट. इट इज़ चिकन मक्खन वाला दैट यू कैन गेट एट देस. तो चॉइस है आपकी, और ये कॉल करने की भी चॉइस है आपकी. अभी गाना लगाती हूँ और एक लाइन पे म्यूट करने वाली हूँ, और वो लाइन आपको बताना है. आर यू रेडी फॉर इट? आई एम गेटिंग रेडी टू प्ले द सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू इन जस्ट अबाउट ए सेकेंड हियर. लेट्स गेट इट फॉर यू. चलो शुरू करते हैं. हाँ, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. एक लाइन जो मिसिंग होगी बताना है आपको.

0: अच्छा वो मिसिंग लाइन क्या है वो आपको बताना है. हमने कहाँ तक प्ले किया मैं वो बता देती हूँ कि बंगले के पीछे है, ओके वंस अगेन आई एम गोना से, बंगले के पीछे है नाला, घुसू कहाँ से मैं साला, उसके बाद की लाइन क्या है ये आपको मुझे बताना है. फनीशर रेडियो यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए. हेलो कैन यू हियर मी? Alright, I'm going to go to this next caller. You are live on air. बताइए, बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, के बाद की लाइन क्या है? Okay, both the calls dropped. Okay, I'm going to take this next caller. You're live on air. Hello. कुछ तो दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से आ रहे हैं लेकिन फिर ड्रॉप हो जा रहे हैं कॉल्स. देखते हैं अगर कोई और कॉल करता है मुझे इस वक्त. और You're live on air. Can you hear me?
1: Yes, I can hear you.
0: Perfect.
1: Can you hear me as well?
0: Absolutely, okay. I can hear you. अगली लाइन क्या है बताइए.
1: So, कहाँ तक आपने प्ले किया है? बंगले के पीछे
0: है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, बस उसके बाद की लाइन बतानी है आपको.
1: मेरी जाओ मेरी जाओ,
0: वो उसके उसके बाद है, उसके बीच कुछ एक और लाइन
1: बंगले
0: है.
1: के पीछे है. ओके
0: बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं, दैट गाली, एंड देन उसके बाद क्या लाइन है?
1: ओके आई थिंक आई या
0: ऑल राइट, आई एम गोइंग टू प्ले इट अगेन. ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल सवाल हो जाएगा लोगों के लिए. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू प्ले इट अगेन. दिस इज द पुंगी सॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन. सुनते हैं एक बार और फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं एंड देन यू गो. एक बार गाना प्ले करने के बाद दिमाग में आ जाता है एक्चुअली.

0: ऑल राइट, लेट्स सी इफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर. क्या है वो अगली लाइन?
1: लैला की खिड़की खुली है, घुसू कहाँ से हमें ताला.
0: खिड़की के नीचे है नाला. आपने अगली लाइन बता दी, इसलिए आई एम हैप्पी. आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच दिस वन एनी फर्दर. लैला की खिड़की खुली है, बिल्कुल सही जवाब है आपका. आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से एक शानदार गिव अवे, एंड इट इज ईदर ड्राइड चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न या फिर बटर चिकन, यानी कि चिकन मक्खन वाला. आप क्या खाना पसंद करोगे? इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बट आई एम जस्ट क्यूरियस. या हाँ जी, एनीथिंग वेज. ऑल राइट, ठीक है. तो आप मतलब चिली बेबी कॉर्न खाने वाले हो. गुड चॉइस देयर. वैसे इनमें से कुछ भी चुनते ना तो अच्छा ही होगा हमेशा. इट इज आफ्टर ऑल रेड हॉट चिली पेपर, राइट सर. नाम क्या है आपका?
1: अनूप.
0: अनूप, होल्ड द लाइन फॉर मी. आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ एयर एंड इन द मी

And it is the Pungi song that you heard, ladies and gentlemen, from Agent Vinod. और इसी के लिए जो अनूप लेकर गए हैं Red Hot Chili Pepper के तरफ से that amazing giveaway that anybody can vouch for. मेरे मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं कि Red Hot Chili Pepper का खाना कितना amazing होता है यार. Anything that you try from there. चलिए, ये दिल की बात मैंने बोल दी और यहाँ से आगे लेकर जाने वाली हूँ उन फिल्म्स की तरफ जो रिलीज़ होने वाली है जून के महीने में. सो लेट्स सी विच ऑल फिल्म्स. इट इज़ वेलकम टू द जंगल. वो अक्षय कुमार और मल्टी स्टारर जो है हाईली एंटिसिपेटेड ऑनसम्बल कॉमेडी स्केड्यूल फॉर लेट जून रिलीज एक्चुअली. सो विल फाइंड आउट उसके बारे में. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर विकिपीडिया पेज पे जाके और पता कर सकते हैं. इट इज़ वेलकम टू जंगल. आई डोंट नो कैन आई बी रियली ऑनेस्ट विथ यू. मैं पता नहीं, मेरा ऑलरेडी मन नहीं है इस फिल्म को देखने का. आई हैव मेड अप माई माइंड कि ये अच्छी नहीं हो सकती है. अब अगर आप देखते हो और आपको अच्छी लगती है तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू चेंज माई माइंड. लेकिन फिलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फिल्म में, विच इज़ वेलकम टू द जंगल. ठीक है, ये अगर आप अगर लाइट हार्टेड मतलब वो दिमाग पर ही रख के देखने वाली फिल्म देखना चाहते हो तो आई एम श्योर ये देखी जा सकती है, इंजॉय की जा सकती है. नाउ देर इज़ दिस मूवी कॉल्ड गवर्नर. मनोज बाजपेयी का नाम आते ही कोई भी प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो गवर्नर द साइलेंट सेवियर, ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है स्टारिंग द वन एंड ओनली मनोज बाजपेयी और साथ में है आधा शर्मा और ये जून 12th को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में. नाउ देर इज अनादर फिल्म भारत भाग्य विधाता विच स्टार्स कंगना रनावत. नाउ दिस इज ऑल्सो रिलीजिंग ऑन जून 12th. तो देखना पड़ेगा कि दो हैवी वेट जो एक्टर्स हैं इन दोनों में से किसकी फिल्म ज़्यादा चलती है. सी दोनों ही अलग किस्म की फिल्म होंगी, सो दे हैव देयर स्पेस एट द बॉक्स ऑफिस आई एम श्योर. फिर बंदर की बात करते हैं जो इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है. एंड दिस वन स्टार्स बॉबी देओल, सबा आज़ाद एंड गगन आहूजा. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ट्रेलर. एंड फॉर श्योर बॉबी देओल के लिए एक अमेजिंग प्रोजेक्ट टू कम एज लीड हीरो इन दिस फिल्म. विल फाइंड आउट अबाउट दिस वन, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ लुकिंग. एंड ऑफकोर्स देन लेट्स टॉक अबाउट डेविड धवन्स फिल्म. एंड आई थिंक इट इज़ द थर्ड फिल्म विथ वरुण धवन, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और इसके बाद ये मेरे ख्याल से ना फोर्थ, मेरे ख्याल से थर्ड टाइम इज अ चार्म. कैन वी से दैट फादर सन डुओ डेविड धवन एंड वरुण धवन की ये फिल्म विच विल ऑल्सो स्टार यू नो मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े. उसी फिल्म का ये गाना हो जाए जिसके रिव्यूज अत्यंत ही खराब आए हैं. लेकिन पता नहीं, मैंने जब पहली बार सुना विदाउट रीडिंग एनी रिव्यूज, यानी कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल मीडिया और द सॉन्ग क्रिटिक्स, मुझे ये गाना एक्चुअली पसंद आया. तो मेरे ख्याल से अब जब मुझे इतने सारे रिव्यूज पता चले हैं कि नहीं पसंद आ रही है लोगों को, तो मैं दोबारा सुन के फिर एक बार एनालाइज करना चाहती हूँ. लेकिन आई थिंक आई लव दिस रिक्रिएशन. लेट्स गेट इट फॉर यू फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, दिस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म.

ये जान लीजिए कि भाई ये गाना जो है इट इज अंडर स्क्रूटनी, क्योंकि विशु भागनानी जो है, जो पूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन चलाते हैं, उन्होंने ये जो है इस डेविड धवन की कंपनी पे जो है एक मैसिव 400 करोड़ रुपीस का लॉ सूट ठोक दिया है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अनऑथराइज यूज ऑफ चुनरी चुनरी इश्क सोना है, दैट ट्रैक इन दिस अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ये जो जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है आप जाके पता कर सकते हो. आई एम सीरियसली नॉट दैट मच इंटरेस्टेड. मुझे गाने से मतलब है, गाना सुनाना मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है. एंड आई थॉट दिस वॉज अ नाइस रिक्रिएशन. क्या ओरिजिनल इससे अच्छा है? हैंड्स डाउन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मुझे ये रीमेक भी बुरा नहीं लगा, लेट्स पुट इट दैट वे. चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं.

0: बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मुझे ये रीमेक भी बुरा नहीं लगा, लेट्स पुट इट दैट वे. चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
10: Mera retirement plan ready hai.
11: Plan ya hope?
10: Matlab?
11: Matlab hai. Plan matlab strategy. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
10: ओके, तो मेरा वाला होप है.
11: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
10: क्यों?
11: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
12: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट द वेल्थ टैक्टिक डॉट कॉम.
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
15: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
18: हेलो, accident claim? Okay. Name of the lawyer?
19: Omar Khwaja.
20: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
21: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
22: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
23: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
24: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
23: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
25: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
26: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
25: कंप्यूटर जी, एस

0: लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
1: SBI लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
2: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
3: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
5: Tracks that put you on the right track.

एंड सुमन कल्याणपुर को हम याद कर रहे हैं आज, क्योंकि कल वी केम टू नो अबाउट दैट वेरी सैड न्यूज़। कुछ हफ्ते पहले आशा जी की खबर आई और अब सुमन कल्याणपुर की जो ये खबर आई है, दैट ब्यूटीफुल, वेरी मैजिकल वॉइस, दैट वेलवेटी वॉइस, जिन्होंने पता नहीं कितनी जनरेशंस को एनचैंट किया है। एंड मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक्चुअली, कितने सारे उनके गाने मैं लता जी की आवाज़ ही सोचती थी। एंड दैट अनकैनी रिजेम्बलेंस टू लता जीज़ वॉइस, ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ कई लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन रही है और रही रहा था उस टाइम पे। इतने सारे गाने जो एक्चुअली सुमन कल्याणपुर के आवाज़ में हैं, वो हमने कितने दिनों तक, सालों तक, एंड क्या पता कि आपको नहीं पता हो, लेकिन ये जो गाना आपने अभी सुना रफ़ी साहब के साथ, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी। और ये पूरा सेगमेंट उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। येस्टरडे वी केम टू नो अबाउट दिस वेरी सैड न्यूज़ दैट केम आउट ऑफ द फ्रटर्निटी, फिल्म फ्रटर्निटी, एट द एज ऑफ 89, सुमन कल्याणपुर इज़ नो मोर विद अस। तो आज उनके गाने और उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ इस आखिरी सेगमेंट में। और एक जनाब थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था, एंड आई एम सो सॉरी आई हैव फॉरगॉटन योर नेम, बट आई विल डेफिनेटली प्ले योर सॉन्ग रिक्वेस्ट बाय सुमन कल्याणपुर, दैट विल डेफिनेटली कम फॉर एवरीबॉडी टू एन्जॉय। देर इज़ दिस सॉन्ग जो कि, अगर सुमन कल्याणपुर की बात हो रही है, जिससे मेरी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई। एंड ये वो गाना है जिससे मुझे पता चला कि सुमन कल्याणपुर एक सिंगर हैं। ये हमेशा बड़ी लो प्रोफाइल रही हैं लता जी के सामने, मेरे ख्याल से इनको वो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी हकदार हमेशा रही हैं। और जो म्यूज़िक के एक्चुअल जो रेट्रो म्यूज़िक के लवर्स हैं, उन्होंने हमेशा उनकी आवाज़ को भी उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार दिया जितना लता जी की आवाज़ को। लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक विच एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर मी इन माई वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक द नेम ऑफ सुमन कल्याणपुर।

सुमन कल्याणपुर एंड रफी साहब दोनों ही नहीं है, लेकिन ये इनकी जो चमकती हुई आवाजें हमेशा इन गानों में चमकती रहेगी. एंड टॉकिंग अबाउट ड्रेम ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी आर प्लेइंग इन दिस लास्ट सेगमेंट, रिमेंबरिंग सुमन कल्याणपुर हु पास्ड ऑन यस्टरडे एट द एज ऑफ 89, हम यहाँ पे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स को याद करना चाहते हैं, जो कि कितने सालों से चला आ रहा है, और इट हैज़ द लेगेसी ऑफ being passed down to generations ahead. तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आज जो आप अपने बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए खरीद रहे हो, वो आगे जाके आप अपने बच्चों को और वो बच्चे अपने बच्चों को देने वाले हैं. तो ये वो डिज़ाइन है जो कभी पुरानी नहीं होती है, ये वो खरा गोल्ड या डायमंड की हम बात कर रहे हैं जो कभी ख़राब नहीं होगा. तो इसीलिए दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन रियली बाय फॉर योर सेल्फ एंड देन पास डाउन. सो यू हैव टू रिमेंबर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. चाहे आपकी एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, या किसी भी किस्म का सेलिब्रेशन, या सिंपल अगर आपने अपने आप को ट्रीट करना चाहते हो, तो ये एक वो जगह है जहाँ पर आपको अपनी पसंद का डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन दैट यू आर लुकिंग फॉर. ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को ज़रूर याद रखें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स अबाउट सुमन कल्याणपुर. जी हाँ, इनके बारे में शायद लोगों को उतना नहीं पता जितना लता जी के बारे में पता हो, और ये कंपैरिजन इसलिए क्योंकि इनकी आवाज़ें इतनी मिलती जुलती थी. लेकिन एक टाइम था जहाँ पे लता जी का मतलब सर्वे सर्वा थी, तो कोई भी अगर म्यूज़िक कंपोजर है वो लता जी के पास ही जाते थे अपने गाने को लेकर, इफ़ देर इज़ अ फीमेल वॉइस दैट दे नीड. और जब एक ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन रफ़ी साहब और लता जी, रॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि 3-4 साल या मेरे ख्याल से 5 साल 1962 टू 1967 आई थिंक इट कंटिन्यूड, और ये दोनों की फ़िलोसफी जो थी बिल्कुल अलग थी. और वो फ़िलोसफी ये थी कि लता जी का कहना था कि आर्टिस्ट का राइट है कि उन्हें एक पैसिव इनकम उनका होता रहे, एक परसेंटेज ऑफ सॉन्ग कलेक्शन जो रिकॉर्ड सेल्स पे मिलता है वो उन तक पहुंचता रहे, चाहे वो सेल्स की बात हो या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट में, उनको एक हिस्सा परसेंटेज मिलता रहे जो जिस गाने में उन लोगों की आवाज़ें हैं, प्लेबैक सिंगर्स की आवाज़ें हैं. वेयरएज रफ़ी साहब का स्टांस ये था कि एक बार जो आपको अपनी पेमेंट मिल गई फॉर द सॉन्ग दैट यू हैव साइंड अप फॉर, उसके बाद स्टोरी एंड्स थे. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो था बहुत ज़ोरदार था, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये हुआ कि दे बोथ स्टॉप्ड सिंगिंग डुएट्स टुगेदर. और तब बारी आई कि कंपोजर्स इधर उधर देखने लगे. जो लता जी के सपोर्ट में थे वो रफ़ी साहब के जगह महेंद्र कपूर को साइन करने लगे, और जो समझ लीजिए कि रफ़ी साहब के सपोर्ट में थे वो फीमेल आवाज़ के तौर पे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लेने लगे. और मौका मिला सुमन कल्याणपुर को गाने का सम अमेजिंग सॉन्ग्स ड्यूरिंग दोज 3-4 ईयर्स.

रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर और सुमन कल्याणपुर को याद करते हुए हम ये जो आखिरी सेगमेंट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू, और यहाँ पर कुछ और सुमन कल्याणपुर के बारे में बातें, क्योंकि शी पास्ड ऑन येस्टरडे एंड इट सीम्स जस्ट राइट टू थिंक अबाउट ए लिटल मोर, क्योंकि हमारी जनरेशन तक शायद सुमन कल्याणपुर की बातें बहुत स्ट्रांग हैं. उसके बाद की जनरेशन अगर सुन रही है तो जान ले कि ये ढाका में शी वॉज बॉर्न, एंड सुमन कल्याणपुर की अपनी एक्चुअल उनका एक्चुअल पैशन था पेंटिंग और आर्ट्स, और इसीलिए उन्होंने मुंबई के प्रेस्टीजियस सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग परस्यू करना शुरू किया. एंड म्यूज़िक तो बस ऐसे ही हो गया कि एक कुछ फैमिली गैदरिंग में उन्होंने गाना गाया, और एक फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने देखा कि वो इतना बेहतरीन गाती हैं, एंड वहाँ से उनको जब इनक्रेज किया और फिर आगे चल के जब इस तरह के उन्होंने गाने गाया और उसमें अपना पैशन भी पाया, तो सुमन कल्याणपुर का नाम सिर्फ फैमिली तक नहीं, हम सब ने जाना.

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू माई देसी पीपल. मैं हूँ आरजे सिमी, एके आरजे देसी गर्ल, और लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. और इस मंडे को ना एक म्यूजिकल डिबेट होने वाला है जो मैं इनिशिएट करने वाली हूँ. जी हाँ, रीमिक्स वर्सेस ओरिजिनल. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जनरेशन को ना डिवाइड कर देता है. एक तरफ होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि यार ओरिजिनल का मजा ही अलग है, ये रिमिक्स वाले ना गाने को बर्बाद कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस रिमिक्स ने इस गाने को एक नई लाइफ दे दी, यू नो, सेकंड चांस दे दिया, हमें इस जनरेशन को भी ये सुनने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिमिक्स. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आर यू ऑन द साइड ऑफ टीम रिमिक्स या आर यू ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिनल? मतलब आपको पसंद है कि गाने का रिमिक्स बनाया जाए या नहीं? आप हमें कॉल करके बताइए एट 972-235-5555 पे, और ढेर सारी बातें करेंगे रिमिक्स वर्सेस ओरिजिनल की इन दिस शो. सो स्टे ट्यून ऑन फन एशिया 104.9 FM.

आज हम बात कर रहे हैं दी ओरिजिनल वर्सेस रिमिक्स सॉन्ग्स की। जी हाँ, एक म्यूजिकल डिबेट चल रही है और अभी अभी मुझे बहुत सारे लिसनर्स का जो है कॉल आया और बताया उन्होंने कि वो किस तरफ हैं। और मैं सच बताऊं तो टीम ओरिजिनल जो है वो लीड कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो रिमिक्स होता है ना वो गाने को थोड़ा बर्बाद सा कर देता है। दे लिटरली मर्डर द म्यूजिक, कोटिंग फ्रॉम द लिसनर्स। एंड जो मज़ा रेट्रो में है, जो ओरिजिनल वाइब थी सॉन्ग को, जो सोल थी उसको, वो थोड़ा किल कर देते हैं। वैसे कहा जाए तो सही भी है, लेकिन कुछ लिसनर्स ने ये भी कहा कि एटलीस्ट जो न्यू जनरेशन है उसको पता चल रहा है कि यू नो देर वॉज अ म्यूजिक लाइक दिस विच एग्जिस्टेड इन द प्रीवियस जनरेशन। और उनके ओरिजिनल सिंगर ये हैं, वो किशोर कुमार, रफ़ी साहब, ये सब के नाम जानते हैं और वो भी अच्छी बात है। तो कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना जिनको बीट करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है काफ़ी, जैसे कि लग जा गले, एक अजनबी हसीना से, या चुरा लिया है जो तुमने दिल को। ये सारे गाने सुनते ही रेट्रो वाइब्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इन ओरिजिनल्स की सिंप्लिसिटी ही उनकी मेलोडी को मैच करती है और मुश्किल होता है ऐसे गानों को दोबारा बनाना या दूसरे बीट पे लगाना। आपके हिसाब से, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जिनका जो है रिमिक्स बनाना मुश्किल है या फिर बन ही नहीं सकता, मतलब वो मैच ही नहीं कर सकता? कॉल कीजिए मुझे 972-235-5555 पे।

आई थिंक आज जो ये म्यूजिकल डिबेट है ना कि रिमिक्स वर्सेस ओरिजिनल, उसमें टीम ओरिजिनल थोड़ी लीड कर रही है. बिकॉज अभी हमें सरोमा जी का भी कॉल आया और उन्होंने बताया कि यार क्रिएटिविटी मर गई है क्या कि तुम बार बार रिमिक्स बना रहे हो. और लेकिन हमें और भी कॉल्स आए हैं सुधीर जी के, उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ रिमिक्सेस एक्चुअली अच्छे होते हैं और वो मेंटेन करते हैं ओरिजिनल के रिदम को, उसके सोल को, और कभी कभी वो बेहतर भी होते हैं. उन्होंने कोट किया जैसे कि आज तुमसे पहली बार है ये सॉन्ग को जब रिमिक्स बनाया गया तो काफ़ी अच्छा था. और सही बात है, बहुत सारी रिमिक्सेस अच्छे भी होते हैं, जैसे कि काला चश्मा अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो भी एक ओरिजिनली एक पंजाबी ट्रैक था जिसको कि रिवर्स किया गया, रिमिक्स बनाया गया और अब तो वो वेडिंग एंथम बन गया है. वैसे ही लैला में लैला है रईस मूवी से, इसमें SRK एंड सनी लियोनी जी की केमिस्ट्री ने इस गाने को नई पहचान दे दी. सोच ना सके फ्रॉम द मूवी एयरलिफ्ट वॉज अगेन अ बॉलीवुड अडेप्टेशन ऑफ ओरिजिनल पंजाबी सॉन्ग, और आंख मारे भी लोगों को काफी पसंद आया. और मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कौन सी साइड पे हो आप, टीम ओरिजिनल या फिर टीम रिमिक्स?

0: Special Injury Law Partner, the Law Offices of Omar Khwaja.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton, rich, bold, no compromises.
3: Isiliye tandoori flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit tandoori flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
4: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodyalcpa.com.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
7: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेसिडेंसी, कॉन्टेक्ट द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी आपके अपने शो में द आफ्टरनून अड्डा। और आज का जो म्यूजिकल डिबेट है ओरिजिनल वर्सेस रिमिक्स में हमें काफी कॉलर्स जो है अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। और ऊंचा लंबा कद भी एक लिसनर ने सजेस्ट किया था कि ऊंचा लंबा कद ओरिजिनली भी कितना एकदम बहुत बीट वाला वाइब्रेंट सा सॉन्ग है और इसका जो रिमिक्स मैंने अभी आपको सुनाया जो वो भी उसके एसेंस को मेंटेन रख रहा है। तो वी आर क्वाइट हैप्पी विद द रिमिक्स हियर। और इस टॉपिक को हम यहीं कंक्लूड करेंगे कोटिंग शैलजा जी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया, बताया कि देखो सॉन्ग और सॉन्ग पे डिपेंड करता है, जस्ट डिपेंड्स कि हाउ द मेलोडी और द एसेंस इज कैरिड ऑन इन द रिमिक्स। अगर वो उसके ओरिजिनल वाइब को किल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गोरी है कलाइया, उन्होंने बताया कि रिमिक्स इज एज गुड एज ओरिजिनल, जैसे कि आंख मारे है और फिर दूसरे सॉन्ग्स भी हैं ऐसे जिसने रिमिक्स वर्जन भी उतना ही अच्छा है जितना कि ओरिजिनल। बट वहीं पे कभी कभी रिमिक्स करते वक्त बहुत सारा एडिशंस और डिलीशंस हो जाते हैं इन द सॉन्ग जो कि उसको बर्बाद कर देता है, विच इज नॉट गुड। सो इस ट्यून पे, इस अग्रीमेंट पे हम इसको क्लोज करते हैं इस डिबेट को कि एसेंस मेंटेन रहना चाहिए अगर आप रिमिक्स कर रहे हो तो। और बस इस सॉन्ग के बाद मैं लेके आई हूँ सैल्स चिकन की तरफ से गिव अवे, तो कहीं जाइएगा मत क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गिव अवे आपका वेट कर रहा है।

मुझे तो बहुत सारी तारीफें चाहिए होती है यार, मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी कोई तारीफें करे। मैं हूँ आरजे सिम्मी और मैं लेके आई हूँ अब गिव अवे का राउंड। अगर आपको एक सवाल पूछूंगी मैं, अगर आपको उसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है और उसका जवाब बताना है। अगर आपका जवाब सही मिला हुआ तो आप जीत सकते हैं मौका फ्री 3 लिटरली जम्बो टेंडर्स खाने का। मतलब क्या खतरनाक गिव अवे है ना ये, तो तैयार हो जाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, मीट लवर है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चिकन की, दैट टू फ्रॉम सेल्स हॉट चिकन, आई मीन अमेजिंग फ्लेवर दे हैव। तो सवाल ये है कि जो सॉन्ग है हम्मा हम्मा, वो ओरिजिनली किस फिल्म का गाना था और इसका रिमिक्स किस नई मूवी में यूज़ हुआ है। आपको बताना है ओरिजिनल मूवी सॉन्ग का और रिमिक्स किस मूवी में यूज़ हुआ है वो भी आपको बताना। अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

मैं गिव अवे राउंड का क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ लोगों को जानने के लिए कि हम्मा हम्मा जो सॉन्ग है, एक हो गए हम्मर तुम, ये वाला जो सॉन्ग है हम्मा हम्मा, ये ओरिजिनली किस मूवी में था और इसका रिमिक्स किस मूवी में था? अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

भाई जवानी तो दीवानी होती ही है, और जो जवान लोग हैं वो भी काफी दीवाने होते हैं। मैं हूँ आरजे सिमी, और अभी अभी हमने अपना गिव अवे राउंड कंप्लीट किया है। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो सॉन्ग है हम, ये ओरिजिनली किस मूवी का पार्ट था और इसका रिमिक्स किस मूवी में आया है। तो इसका जवाब है कि ओरिजिनली बॉम्बे मूवी में था, और इसका रिमिक्स आया है ओके जानू में, जो कि काफी फेमस हुआ। दोनों ही सॉन्ग्स अपने अपने जमाने में काफी फेमस हुए, और इसका सबसे जो सही जवाब दिया है वो है यश राज जी। आप हैं आज के लकी विनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस यश, आपको मिला है सैल्स नेशवल हॉट चिकन से फ्री 3 जंबो टेंडर्स खाने का मौका। आई मीन इट इज अमेजिंग। और आप बिल्कुल इनको कांटेक्ट करें, हमें 1 से 2 दिन दीजिए, हम आपके डिटेल्स सेल्स नेशनल चिकन के साथ शेयर कर देंगे, फिर आप जाके वहाँ पे अपना गिव अवे ले सकते हैं। और ये रिचर्डसन लोकेशन में ही लेना होगा आपको, बाई जून 5th यू नीड टू रिडीम दिस। ओके, ऑल्सो फॉर ऑल दी अदर लिसनर्स जिन्होंने कॉल किया फॉर द स्पेशल गिव अवे एंड एवरीथिंग, जो भी एक्साइटेड हैं फॉर सेल्स नैशविल का हॉट चिकन के लिए, वो लेके आए हैं एक अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। मतलब आई हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर इन डैलस। आई मीन आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाने का मौका मिलेगा। कंडीशंस ये है कि सिर्फ आपको 1 कप ऑफ मिल्क मिलेगा इसके साथ, और कोई डिपिंग अलाउड नहीं है जी। और जो प्राइस है ना वो टोटली वर्थ द पेन है। अगर आपने 1 जंबो टेंडर खा लिया तो विद इन टाइम तो आपको मिलेगा फ्री सैंडविच फॉर स्ट्रेट 7 डेज, और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खत्म कर लिए तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज। और अगर आप वो ग्रैंड चैंपियन हो, स्पाइस मास्टर हो और चिकन लवर हो, और आपने तीनों इन्फर्नो टेंडर्स खत्म कर लिए विद इन द टाइम फ्रेम, तो आप जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज विच इज फ्री सैंडविच फॉर अ मंथ फॉर 30 डेज। और ये जो चैलेंज है वो हो रहा है जून 6th को 4 PM पे, तो बिल्कुल जाइए रजिस्टर कीजिए। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर दिस इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज थ्रू फन एशिया। आप फन एशिया के वेबसाइट पे जाएं अगर आपको इसमें भाग लेने का मन है तो, और आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज डेफिनेटली अ चैलेंज टू बी अ पार्ट ऑफ।

0: जब भी मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये चांद की चूड़ी कैसे पहना सकता है यार। मतलब चांद पे ले जाने तक तो ठीक था, बट अब उसकी चूड़ी भी पहना देंगे। आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो, मैं हूँ आरजे सिम्मी और ये है आपका शो द आफ्टरनून अड्डा। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं फ्रॉम उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर अमन। सो हाय अमन।
1: हेलो फनेशिया, सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। आज है पहला पहला दिन जून महीने का, और पहला दिन वीक का भी पहला डे है, तो इसको ये कहेंगे आज तो खुश नहीं होगे तुम पर, लेकिन सैलरी डे है तो इतनी खुशी तो डेफिनेटली मिलती है। लेकिन अपने दोस्तों को याद करा दें कि इस महीने प्लीज वो गलती मत कीजिएगा जो आपने पिछले महीने या पिछले पूरे साल भर में की या पिछले साल की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की अगर आप पेमेंट दे के परेशान हैं तो वो परेशानी मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरने वाली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का कर्जा अगर आप देते हैं तो 28 से लेकर के 47% इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसके कारण आपका क्रेडिट कार्ड कभी नहीं उतरेगा क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर आप परेशान है कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट देता हूं, ना मेरा स्कोर बन रहा है ना मेरा कर्जा उतर रहा है, तो आप उरा को कॉल कीजिए। उरा आपके सारे क्रेडिट कार्ड, बिजनेस के, स्टोर के, पर्सनल, उन सारे कार्ड के, आपके, आपकी वाइफ के या बच्चों के, उन कार्ड की एक पेमेंट बना देगा और उसमें आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा। जब आधा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाएगा तो बाकी आधा बचेगा, आसान सी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बन जाएंगी और क्रेडिट कार्ड उतर जाएगा। लेकिन कार्ड्स बंद हो जाएंगे, ये गारंटी है, कार्ड्स बंद हो जाएंगे लेकिन कार्ड सेटल हो जाएंगे, पेड ऑफ हो जाएंगे, आपका डेट खत्म हो जाएगा। डेट खत्म होगा तो उसका बेनिफिट ये है कि स्कोर इंप्रूव करेगा, आपको होम लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, गाड़ी का लोन आराम से मिल जाएगा क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करेगी। इस क्रेडिट कार्ड के डेट के साथ साथ अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन्स भी हैं, पर्सनल लोन्स जो अनसिक्योर्ड डेट कैटेगरी में आते हैं, उन लोन्स के अलावा अगर गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है या गाड़ी टोटल हो गई है, उन लोन्स को भी नेगोशिएट किया जा सकता है, आधा माफ करवाया जा सकता है। लेकिन करना सिंपल ये काम है कि उरा को कॉल कीजिए, डिस्कस कीजिए, फ्री एनालाइज कराइए कि कौन कौन से लोन्स आपके माफ हो सकते हैं आधे से ज्यादा और किन लोन्स की कैसी पेमेंट्स बन सकती है। तो इस तरह मिनिमम पेमेंट आंखें बंद करके देने से ये आप किसी रास्ते में नहीं पहुंचेंगे, ना ही क्रेडिट कार्ड का लोन पे ऑफ होगा ना पर्सनल लोन पे ऑफ होगा, और नए लोन्स इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो ऑलरेडी वेरी हाई। सो आप कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, 1-888 यानी कि 888-888-9914, लड़ी इनमें 14 याद रखो, बाकी सारे 8 ही है। या फिर अगर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं अपने दोस्त अमन से, कॉल मी 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org, नंबर ना लिख पाए हों तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फन एशिया का नंबर आपके दिल जहन में लिखा हुआ है। एक अच्छे से गाने की फरमाइश कीजिए प्रोग्राम में सुनते सुनते और अमन का नंबर ले लीजिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए।
0: थैंक यू सो मच अमन हमारे लिसनर से कनेक्ट करने के लिए। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू, हैव अ गुड डे।
1: यू टू, थैंक यू।
0: और मैं अब अपने लिसनर्स के लिए कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्ले करने जा रही हूँ, तो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM।

बिल्कुल लिसनर्स, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब लाइफ में यही जो है रहना चाहिए एसेंस, की हमको फिक्र नहीं करनी है, टेंशन लेने का नहीं दोस्तों. स्ट्रेस लेने से क्या हो जाएगा, जो होना है वो तो होगा ही. अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेदर फोरकास्ट आज का, एंड दिस इज़ ब्रॉट टू यू बाय मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, जो आज डालस में जून का पहला दिन लेके आया है जबरदस्त गर्मी. जी हाँ, आज पूरे दिन भर धूप खिली रहेगी और टेम्परेचर 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुँच सकता है. हीट इंडेक्स यानी महसूस होने वाला है तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर एट टाइम्स. इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. पानी पिए, जूस पिए, कोकोनट वाटर पिए. और हवा हल्की सी साउथ डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन गर्मी से ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. शाम के बाद मौसम थोड़ा बेहतर लग सकता है और रात का टेम्परेचर्स लगभग 74 to 75 degrees Fahrenheit के आसपास रहेगा. तो ये था आज का वेदर फॉरकास्ट अगेन बाई मलाबार गर्ल्स एंड डायमंड्स, एंड कीप लिसनिंग टू द गुड म्यूजिक ऑन फनेशियर रेडियो.

अगर आपका भी दिल कुछ अच्छा अच्छा खाने को चाहता है तो आप जा सकते हैं पेस्ट्री ईटरी। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवरफुल चाट तक। मतलब अगर आपने अभी तक पेस्ट्री ईटरी को एक्सप्लोर नहीं किया है, जो कि लोकेटेड है एट हब 121, तो आप शायद कुछ मिस आउट कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मिलेगा आपको इंडियन स्ट्रीट फूड मॉडर्न फ्लेवर से। और अगर आप ब्रंच के लिए सोच रहे हैं, लंच के लिए, डिनर के लिए, डेट नाइट के लिए, या फिर चार लोग, पांच लोग एक साथ बस आके बातें करना चाहते हैं, खाना, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो पेस्ट्री जो है वो लेके आता है आपके लिए परफेक्ट मिक्स फ्लेवर का, एनर्जी का, एड ऑन वाइब्रेंट वाइब्स का। जी हाँ, यू शुड विजिट पेस्ट्री ईटरी एट हब 121। और अगर आपको इसके बारे में और एक्सप्लोर करना है तो आप जा सकते हैं pastryeatery.com, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी है। टिल देन कीप लिसनिंग टू अस फर्नीचर रेडियो 104.9 FM, अच्छे अच्छे गाने के साथ। मैं हूँ आरजे सिम्मी।

0: वैसे ये सेनोरिटा फिलहाल आपको माई टाइम इक्विटी के बारे में बताना चाहती है. जी हाँ, माई टाइम इक्विटी इज लेड बाय सीपीए सुधीर पाई जी, और ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज. और जो डिसीजन मेकिंग होती है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो माई टाइम इक्विटी कैन डेफिनेटली बी अ गुड स्टॉप फॉर यू. और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 469-702-1272 पे, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज mytimeequity.com. अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, बूस्ट करना है, तो माई टाइम इक्विटी जैसा कि मैंने बताया वो आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन भी ऑफर करते हैं अराउंड योर गोल्स. कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो, विल बी राइट बैक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge.

0: Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
1: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.

आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिम्मी विथ योर शो आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो चुका है 2:10 और हम फाइनल गिव अवे राउंड में आ चुके हैं। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है और अगर आपने जवाब सही दिया तो आप जीत सकते हैं मौका फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 के गिफ्ट कार्ड को जीतने का। तो फिर देर किस बात की है, मैं अभी सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि जो दिलबर दिलबर सॉन्ग है वो ओरिजिनली किस फिल्म एक्ट्रेस पे बना था, मतलब किस पे फिल्म आया गया था, बेसिकली ओरिजिनली किस एक्ट्रेस ने उसमें एक्ट किया था। आपको अगर जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए एट 9722355555 पे।

इसके साथ हमने गिव अवे राउंड का क्लोज कर रहे हैं, और सबसे पहले जो जवाब दिया था वो है आफरीन जीनत जी, आप जीत चुके हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा फन पिज्जा किचन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे है ना फ्लेवर और फायर एक साथ बस ऐसे मिल रहे होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है, वेजी लवर है, तो अचारी पनीर पिज्जा जो है आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके जो टैंगी अचार पंच है वो सॉफ्ट पनीर जो मेल्ट होता है ना स्पाइसेस में, ओए होए होए मजा ही आ जाता है। लेकिन अगर आपको मीट पसंद है, नॉन वेजिटेरियन है, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तंदूरी चिकन पिज्जा। जी हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बड्स पे आके अटैक कर रहा हो जैसे। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है, मतलब बोल्ड काइंड ऑफ, या फिर अगर आपको ब्यूटीफुली माइल्ड बैलेंस्ड पिज्जा पसंद है, तो भी आप फन पिज्जा किचन जा सकते हैं। वहां पे ना हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है, मतलब पर्सनलाइज्ड है वैसा कह ले आप। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे, विच इज funpizzakitchen.com।

अगर मुझे अपने लिसनर्स को कुछ डेडिकेट करना होगा तो मैं क्या डेडिकेट करूंगी? ओ लिसनर सुनियो रे. जी हाँ, मैं आपको अभी कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में सुनाना चाहती हूँ. अगर आप अपने बिजनेस एक्सपेंस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कनेक्टिंग अमेरिका लेके आए हैं आपके लिए इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो कि डिजाइन किया गया है आपके बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने में, उसको बूस्ट करने में. और सिर्फ ये इतने पे ही खत्म नहीं होता, ये होम ओनर्स को भी हेल्प करते हैं उनके मॉर्टगेजेस से डील करने में 10 साल या उससे भी कम समय में. तो फिर आपको इंतजार किस बात का है जी? कॉल कीजिए जेम्स को एट 321-888-7345 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं connectingamericafinancials.com और सोचना शुरू कर दीजिए कि कैसे अपने डेली एक्सपेंस को इनकम में बदल सकते हैं. अच्छा तरीका बताएंगे वो आपको.

वैसे तो मेरे बंधा और सखा सब आप ही लोग हैं, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं आपसे कल मिलूंगी इसी वक्त 12:30 से 2:30 बजे तक। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेगमेंट था आफ्टरनून अड्डा का, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विद ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। आपसे गुजारिश है कि आप सेफली ड्राइव करें, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाइड्रेटेड रहें। अगर आपको ओमर ख्वाजा की किसी भी टाइप के कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 4693005046 पे, या फिर आप उनको वेबसाइट पे भी एड्रेस कर सकते हैं, विच इज़ attorneyomar.com। ये और इनकी टीम बेसिकली हेल्प करते हैं किसी भी ट्रक या कार एक्सीडेंट से डील करने में, किसी भी स्लिप या फॉल इंसिडेंट्स में भी आपको हेल्प करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से डील करने में भी, क्योंकि कभी कभी है ना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से डील करना। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि यू डू नॉट हैव टू पे अनटिल यू विन। मतलब अब तो एक फ्री कंसल्टेशन बनता है उमर खौजा की टीम के साथ, अगर आपको जरूरत हो तो। एंड कीप लिसनिंग टू फनेशियर रेडियो 104.9 FM। अभी नेक्स्ट RJ किरण आती ही होंगी आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो।
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइस, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: विद ओवर 25 इयर्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस, सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड रिलेशनशिप कोच आरती वेड्यूला हेल्प्स इंडिविजुअल्स, कपल्स, पेरेंट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स break unconscious cycles using NLP, EFT, hypnosis and mindset reprogramming. Book your free clarity call today at 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com. Mention Phanisha and get 50% off on your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. हर मंडे टिल फ्राइडे आपके लिए लेकर आती हूं ड्राइव टाइम, आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ढाई बजे से पांच बजे तक मैं रहती हूं आपके साथ मौजूद एवरी डे. आप भी मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. आई होप यू ऑल हैड एन एब्सोल्युटली लवली वीकेंड. और मंडे शुरू हो चुका है जी, और मंडे को लेकर आती हूं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में पसंद आपकी, आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन पे, यानी कि फिल्मी फरमाइश. फोन लाइंस मेरी खुली हैं. कोई रिकमेंडेशन आप करना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को कुछ डेडिकेट करना चाहते हो, तो मैं यहां मौजूद हूं जी. 9722355555 90s onwards की रिक्वेस्ट आपसे लूंगी.

रहना है तेरे दिल में से सुन रहे थे आप ये गाना जी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप कुछ आपका कोई स्पेशल मोमेंट आने वाला है, कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है और आप कोई ज्वेलरी खरीदने के का सोच रहे हैं तो हेड टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, लोकेटेड हैं जी प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। ये वो जगह है जहां स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी आपको मिलेगी जो कि बहुत ही एलिगेंट होती है, टाइमलेस पीसेस क्रिएट और क्राफ्ट करते हैं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स वाले। फ्रॉम ब्यूटिफुल rings and earrings to dazzling necklaces as well as contemporary diamond styles, तो आपका perfect piece आप जो ढूंढ रहे हैं, whether it's an engagement ceremony or an anniversary or celebration of something else, आप जो है वो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जाएंगे तो आपको अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज डेफिनेटली मिलने वाली है। सो एक्सपीरियंस देयर अनमैच क्राफ्टमैनशिप एंड ब्रिलियंस एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। और बिल्कुल मत भूलिए उनकी ऐप डाउनलोड करना, द बेस्ट वे टू चेक आउट देयर कैटलॉग एंड सी व्हाट दे आर ऑफरिंग इज by downloading their app. Go to your app store and download Malabar Gold and Diamonds mobile app for the latest collections, updates, aur bhi bahut kuch.

दबंग जो ओरिजिनल थी उसका ये सीक्वल दबंग 2 का रिलीज हुआ 2012 में. एंड दबंग 2 होल्ड्स द डिस्टिंक्ट ऑनर ऑफ बीइंग द वेरी फर्स्ट सीक्वल इन द मेगा स्टार मल्टी डेकेड करियर. यानी कि सलमान खान के करियर की ये पहली सीक्वल थी जो आपने देखी दबंग 2 के नाम से. तो जी आप की फरमाइशें और आपके पसंद के गाने प्ले कर रही हूँ. यास्मीन जी, अगला गाना आपकी रिक्वेस्ट पे प्ले किया जा रहा है, टेकन फ्रॉम द मूवी मोहरा.

This part of our show is brought to you by AG Fintax. They are one of the fastest growing tax firms in the US. Offer karte hain innovative financial solutions and services with untapped potential. Individual या फिर आप बिजनेस ओनर हो, दोनों आपके जो कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह की, वो एजी फिनटेक्स पे सॉल्व होंगी. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर योर फ्यूचर. अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप अभी उन्हें कॉल कर सकते हैं. दैट नंबर इज 469-942-9888. 469-942-9888 इज दैट नंबर. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट agfintax.com. और इसी के साथ ये जो गाना आप सुन रहे थे, यास्मीन जी की फरमाइश पे, टेकन फ्रॉम द मूवी मोहरा, 1994 में ये मूवी रिलीज हुई थी जी. और दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर. फेमस हुई बहुत ज्यादा अपने ब्लॉकबस्टर गानों के लिए, और खास तौर पे ये गाना जो आपके लिए प्ले हो रहा था, यानी कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जिसका अभी कुछ सालों पहले हमने रीमेक भी देखा, बट ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल है. द नेक्स्ट सॉन्ग दैट इज बीइंग प्लेड फॉर यू, सबा की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रहे हैं आपके लिए, टेकन फ्रॉम अनदर ब्लॉकबस्टर मूवी. दिस इज जस्ट मैन, द सॉन्ग इज, सुनिए.

0: Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली।
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
3: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग।
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
3: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
0: क्यों?
3: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
0: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
0: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
0: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
0: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
0: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: मामू, देखो क्या हो गया।
9: ओ, क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
9: ओए, जर्मन का कमाल है।
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
12: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
13: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण एवरी मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM टिल 5 PM एंड 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. ले रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट लाइव. कोई भी रिक्वेस्ट है आपकी तो कॉल कीजिए और मुझे लाइव रिक्वेस्ट कीजिए. 90s एंड और से ऑनवर्ड्स गाने रिक्वेस्ट कीजिएगा जी. दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट. अच्छा ये तो हो गया ये बात. और अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स. जी अगर आप H1B पर हैं, F1 पे हैं, L1 वीजा पे हैं या फिर एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस है आपका और आप प्लान कर रहे हैं योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स आर हेयर टू हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा, फैमिली एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट वीजाज, PERM परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन and US citizenship and many more in between. For more information on EB-5 investor visa program or any other question that you have after listening to this ya koi bhi immigration ke hawale se aapka koi sawal hai to Seema Mehta law offices ko contact kijiye by sending an email at this email ID. That is very simple, info@seemamehtalawfirm.com, which is info info at Seema, SEEMA, Mehta, MEHTA, lawfirm.com. So, zarur check out kijiye. The law offices of Seema Mehta are always here to help you.

कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है जी, और उसी कॉकटेल 2 का ये गाना आप सुन रहे थे जिसमें हमें कृति सेनन, शाहिद कपूर नजर आए, और साथ जो है वो आई थिंक म्यूजिक जो है, ये जो आप आवाज सुन रहे थे ये अरिजीत सिंह की थी। अच्छा, रश्मिका मंदाना भी हैं इस मूवी में, सर इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन द ओरिजिनल कॉकटेल। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं एक अपडेट, और अपडेट आ रही है, आपको पता है आजकल डॉन 3 की कॉन्ट्रोवर्सी कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बल्कि टू बी वेरी फ्रैंक रणवीर सिंह जो है वो काफी लीगल ट्रबल में भी फंस चुके हैं बिकॉज ही चोज टू वॉक आउट ऑफ द फिल्म, और उनको फिर हर जाने का नोटिस फरहान अख्तर और उनकी बहन ने सर्व कराया कि इस तरह नहीं चलेगा। सो डॉन 3 की कॉन्ट्रोवर्सी इज शोइंग नो साइंस ऑफ कूलिंग डाउन। रणवीर सिंह रिपोर्टेडली रीच्ड आउट टू द फिल्म मेकर फरहान अख्तर इन अ बिड टू मेंड देयर फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप, बट द ऑफर वॉज स्विफ्टली टर्नड डाउन। With a 45 crore lawsuit on the table and trade unions closing ranks, कि अब आपको हम बैन भी करने वाले हैं, इशू जो है वो मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल होता जा रहा है। रणवीर सिंह ने क्या प्रपोजल दिया जी, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू एबीपी न्यूज, रणवीर सिंह ने रिसेंटली अप्रोच किया फरहान अख्तर को विद प्रपोजल कि वी विल कोलैबोरेट ऑन अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन फिल्म। उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मैं आपके साथ काम करूंगा बल्कि मैं जोया अख्तर के साथ भी काम करूंगा उनकी यू नो म्यूचुअली अग्रीड फिल्म के ऊपर। सो मैं आप दोनों को एक एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, बट वी विल हैव टू म्यूचुअली अग्री ऑन द फिल्म। जोया अख्तर के साथ आप जानते हैं उन्होंने गली बॉय दी थी 2019 में, लेकिन इस ऑफर को फिलहाल कर दिया गया है रिजेक्ट फरहान अख्तर की टीम की तरफ से। अब आगे ये कबूल होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल आज मंडे जून 1 की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं। रणवीर सिंह ने जो डिस्प्यूट करा है डॉन 3 का, इसके बारे में आपको बताती हूं, लेकिन इस गाने के उस पार पहले आप वापस आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर रणवीर सिंह ने डॉन 3 को क्यों छोड़ा।

जी हाँ, ड्रोन 3 की कंट्रोवर्सी तो खत्म होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा कि कैसे खत्म होगी, लेकिन गाने तो ड्रोन 1 और 2 के हम एंजॉय करते ही रहेंगे. अच्छा जी, आगे आगे बढ़ते हुए अगला गाना आपके लिए लगाने लगी हूँ. विद दैट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू टू ऑल द लिसनर्स इन डालस एज वेल एज स्टोर ओनर्स, दिस वन इज फॉर यू. रवीज समर किक ऑफ इज बैक. जी हाँ, रवि इम्पोर्ट्स समर किक ऑफ इज बैक. अपना कैलेंडर्स अपने अपने मार्क कर लीजिए. आज है June 1st and this summer kickoff is coming up on June 3rd and 4th, 9 subah se sham 5 baje tak, and this year it is going to be bigger. The entire warehouse, Ravi Imports warehouse, turns into a tropical experience. So crazy deals aapko milengi yahan pe, new product launches honge, free gifts honge all day long. You will have the opportunity of meeting with the vendors, discover best sellers as well as stock up like never before. This is Ravi Imports warehouse for you, jisme lag rahi hai unki summer kickoff sale June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. Let me give you the address of Ravi Import warehouse. Zarur visit kijiye aap. This is 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Unka street address hai ji. Visit them June 3rd and 4th, 9 a.m. till 5 p.m. and shop till you drop.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
2: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
3: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business के कुछ सिम्टम्स है, profits है but no cash liquidity। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
6: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
7: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
6: के टू ड्राइव मतलब?
7: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
6: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
7: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran mein. Aap connected hain right here at 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Aur ab lekar aayi hoon aapke liye Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Neon Cactus. Ji haan, agar aap kuch cactus. Ye wo jagah hai jahan Mexican food ya Mexican fusion meets global influence. Fresh ingredients, zabiha halal options, plenty of vegetarian choices, aur sabse important baat, behtareen flavors and amazing vibes. Young, colorful, modern, full of energy, perfect for hangouts, date nights, ya phir wo kehte hai na, aaj mera chill karne ka plan hai. To agar aapka chill plan hai, to perfect spot hai aapke liye Neon Cactus. Aur saath hi saath, top it off with curated cocktails, refreshing mocktails, happy hours Monday to Friday, as well as special deals every single day. तो ये तो हुई आपके लिए सारी मजे मजे की बातें कि नियॉन कैक्टस आपके लिए क्या क्या ऑफर करता है. और भी बहुत कुछ है, जरूर उनको चेकआउट कीजिए. और आपको चांस दे रही हूं टू विन अ $20 गिफ्ट कार्ड, एक्चुअली अ डिस्काउंट, नॉट अ गिफ्ट कार्ड बट इट इज अ डिस्काउंट ऑन योर डाइन इन ऑर्डर. तो आप जाइएगा, डाइन इन करेंगे तो आपके बिल से $20 का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप, इफ यू आर द विनर ऑफ दिस गिव अवे. तो जी सुनहरी किरण के साथ जो हम कॉन्वर्सेशन कॉर्नर करती हैं, सुनहरी किरण मैं खुद ही हूँ, तो कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी. अभी जब हम गाने बजा रहे थे ब्रेक पे एक्चुअली, तो मैंने आपसे डॉन 3 के बारे में डिस्कस किया कि रणवीर सिंह ने जो है वो ना कर दिया डॉन 3 करने से, और क्या वजूहत रही व्हेन ही वाज नॉट कन्विंस्ड विद द स्क्रिप्ट, या स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं हो रही थी, टाइम लैग बहुत ज्यादा था, ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड और व्हाटएवर इट इज. सो माय पॉइंट और माय क्वेश्चन और माय डिस्कशन पॉइंट टुडे इज, व्हाट इज द पावर ऑफ saying no? Should we say no when we don't feel like doing things? कई लोग होते हैं जो ना नहीं बोलना जानते. बहुत बार उनका अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि no, I will not be able to do this, I don't want to do this, but still peer pressure, ये pressure, वो pressure, कुछ ना कुछ pressure के साथ हम ना बोलने को ignore कर देते हैं, और फिर start होता है सिलसिला कॉन्स्टेंट परेशानियों का. सो आप बताइए मुझे 972-235-5555 पे टेक्स्ट कॉल करके कि ऑन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, कि व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू से नो व्हेन यू फील लाइक इट, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट नो व्हेन सेड एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजंस.

0: Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Vivek.
0: Hi, Vivek. Bataiye.
1: हाँ जी. सो आई कम फ्रॉम इंडिया. 25 साल हो गए यहाँ आए हुए. जैसे हम बड़े हो रहे थे तो वहाँ पे somehow the way we grew up, it was so hard to say no to especially your loved ones.
0: Yeah, of course. You can't
1: say no. Who knew you well, or your bosses and even friends. लेकिन somehow नहीं, यहाँ आने के बाद the way we have raised our kids, and I'm glad they are in a position, if they feel uncomfortable, they are very willing to say no.
0: Absolutely.
1: So, अच्छी बात वही है कि ना कहनी आनी चाहिए.
0: Absolutely. And what are just hum agar iske bare mein discuss kare, aap bataiye ki when we were not able to say no to our loved ones or our family or the peer pressure, what do you think are the impacts of that not saying no on the person who is not saying no, the depression, the pareshani? What do you think?
1: Well, so depression will be a little too far fetched. Mm-hmm. It may happen to like very very few people, but yes, like anxiety and like uneasiness, even annoying, like you're annoyed, like why do I need to do this?
0: Yes.
1: I mean, I don't feel like doing it, but kabhi-kabhi karna padta hai abhi bhi. Lekin chalo koi baat. Just take it in a... Yeah.
0: Vivek, thank you so much for participating. Very very aptly said. Please keep listening. I will announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
2: Hi, my name is Mamta.
0: Hi, Mamta. Bataiye.
2: ना कहना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप एट ए टाइम नहीं बोलेंगे तो वही चीज आप पे बार बार अप्लाई होगा.
0: दैट इज सो ट्रू.
2: तो इसलिए सो एक बार में काम खत्म कर देने का है, सामने वाले को दूसरा मौका नहीं देने का है.
0: ये आपने सही बात की. नेवर लेट एनीवन टेक यू फॉर ग्रांटेड. स्टार्ट विद अ नो इफ यू वांट टू, राइट?
2: या
0: परफेक्ट ममता, थैंक यू. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. योर नेम प्लीज.
3: हेलो
0: जी, अपना नाम
3: सभा बात कर रही हूँ.
0: जी सभा, बताइए.
3: जी आई थिंक यू नो कह देना चाहिए, ये वक्त के साथ साथ जब एज बड़ी होती जाती है तो रियलाइज होता है कि नो कहना आई थिंक बेटर है ना कि झूठी उम्मीद हो. और जो चीज पे आप अगर आप श्योर हो कि मतलब नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे को भी उम्मीद से ना रखो, खुद भी अपना पीस ऑफ माइंड ये कि आप बोल दो नो. आई थिंक मेरी अम्मी मुझे बहुत कहती है कि तुम लट मारो कि एकदम से बिल्कुल ही बोल देती हो, लेकिन आई थिंक वो मेरे लिए भी पीस ऑफ माइंड है कि मैं पूरे दिन उसको सोचती रहूं एंड किसी को छुट्टी उम्मीद पे भी रखूं और एट द एंड वो करूं भी ना तो वो मेरे लिए भी वेट कर रहा है आदमी और मैं खुद भी सुकून में नहीं हूं.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही सभा. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन एंड फॉर योर पार्टिसिपेशन आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
4: हाय, माय नेम इज आदिल.
0: जी आदिल, बताइए.
4: अच्छा, मेरे मुताबिक जो है ना तीन किस्म के होते हैं लोग ना, जो हर बात में ही हाँ करते रहते हैं और कुछ हर चीज को एक्सेप्ट ना करते रहते हैं. आपने सही मौके पे सही वक्त के ऊपर उसको रोकना या आपने ना ही कहना है उसको मौके की नस्बत के मुताबिक, यानी आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना सिचुएशन को. और आप उसको जब देखें कि आपके ऊपर सिचुएशन बढ़ रही है आप उसको बोल दो यार नहीं, ये लिमिट क्रॉस हो रही है या ये बात बढ़ रही है.
0: बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली. तो आपका ये कहना है कि वही जैसे हमने कहा, सही वक्त पे इनकार भी बहुत जरूरी होता है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो कह दीजिए, बनिस्बत इसके कि अपने आप को मुश्किल में डाल लीजिए.
4: यस बिल्कुल, ये नहीं कि अब आप हर वक्त हर चीज को ना करते रहे नो. अगर आप कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते उसी वक्त बोल दो यस यार मैं नहीं कर सकता या ये नहीं होगा.
0: बिल्कुल सही आदिल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए, मैं अभी वे अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, वी आर गोइंग ऑन अ सॉन्ग ब्रेक. द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण इज स्टिल गोइंग ऑन, बट वी विल टेक लाइव मोर लाइव कॉल्स आफ्टर दिस सॉन्ग ब्रेक.

0: Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: प्रीति. हाय, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड प्रीति, बताइए.
1: आपने पूछा था ना क्यों करना चाहिए.
0: बिल्कुल. व्हाट इज द पावर ऑफ सेइंग नो एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजंस?
1: अगर हम हर चीज को हाँ करेंगे तो हमें ना की वैल्यू ही नहीं पता लगेगी. और अगर आपको ना नहीं होगा तो आप डिप्रेस हो जाएंगे. लेकिन कभी कभी ना भी अच्छा होता है. जैसे प्यार में ना ना करते करते उसका मतलब होता है हाँ.
0: ठीक है, बिल्कुल सही है प्रीति. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. प्लीज सुनते रहिए जी. जिसका आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और फिर वो झमेला और परेशानी आपके लिए भी और दूसरे बंदे के लिए भी जिसे आपने यस कर दी है. मैं आपकी फोन कॉल्स लाइव ले रही हूँ. वंस अगेन द नंबर इज 972-235-5555. नियॉन कैक्टस की तरफ से ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए आया. You have a chance of winning $20 discount on your dine-in next time you are visiting a Neon Cactus. Wo dekhne mein kaisi seedhi saadhi

थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. ममता अगर आप सुन रही हैं, मेरी सेकंड कॉलर थी ममता, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे कॉल कीजिए. यू आर द लकी विनर ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. ममता प्लीज गिव मी अ कॉल.

ऑलराइट जी, हमारी ममता ने हमें कॉल नहीं किया, इसीलिए द नेक्स्ट विनर विच इज आदिल. आदिल साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए. आई विल टेक योर नंबर. यू आर आवर नेक्स्ट लकी विनर ऑफ नियॉन कैक्टस गिव अवे, $20 डिस्काउंट ऑन योर डाइन इन ऑर्डर.

और इसी के साथ अगले गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. आपको बताती चलूं, 4 बजे से 4:30 बजे के दौरान आपके लिए लेकर आऊंगी वेदर अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, करेंसी अपडेट, कोर प्राइस अपडेट, बहुत कुछ. वैसे तो हम 4:30 से 5 के दरमियान इसे कवर करते हैं, लेकिन मंडेज इज वेरी स्पेशल बिकॉज मंडेज फ्रॉम 4:30 टिल 5 PM वी हैव विद अस संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेज, जो हमारे लाइव कॉल्स आपके लेते हैं और आपके लाइव जो भी आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं उनके आपको जवाब देते हैं. सो 4:30 to 5 संजय माथुर फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेज विल बी हेयर लाइव विद अस राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. एंड आफ्टर दिस ब्रेक वी विल टॉक अबाउट वेदर, ट्रैफिक, करेंसी एंड सो मच मोर. स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप फॉर यू.

A very good afternoon once again to all the listeners of Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting. Acha ji, ab waqt aa chala hai. Sabse pehle, we will begin with the weather update. Aaj hai ji, Monday, June the 1st. Happy June to all of you. We are officially almost, matlab 5 mahine guzar gaye hain. Chhata mahina, yani ke mid month of the year shuru ho chuka hai. Aur June ka mahina hota hai, bahut hi happening. Chuttiyan shuru ho gayi hoti hain bachchon ki. People are traveling. Somebody is going back to their home. To visit their family and friends. कोई कहीं और का travel कर रहा होता है, किसी की vacation lined up होती है. So enjoy your June and July month. It is of course very hot, but it is a very happy time for the families. तो गर्मी की situation थोड़ी सी गर्म सी ही है. 4:11 हुए हैं इस वक्त studio में, और city of McKinney में है 93 degrees. However, it feels like 102, जी हाँ, right now. तो 3 triple digit में feeling, एहसास चल रहा है. चमकता हुआ सूरज, दिन रहा sunny with highs in the mid 90s, जबकि शाम रहेगी mostly clear with lows in the mid 70s. और काफी ज्यादा humidity भी आपको feel हो रही है, so please be very careful. Pollen आज का था 6.5, which is medium. Pollen में क्या परेशान कर रहा है? Hickory, pecan and oak is what is bothering us along with grass. UV index is extremely high, which is 10 and 11. So, अगर आपका बाहर वॉक करने का प्लान है, कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है आपने, तो सनस्क्रीन हैंडी रखिए, साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ सुबह 6:18 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:30 शाम. दिन लंबे हो चले हैं जी, रातें छोटी होती जा रही हैं. तो अभी तो 8:30 है, बहुत जल्द हम 9 बजे तक भी पहुंचेंगे सनसेट में, मगर जब वो टाइम आएगा तो वो भी बताएंगे आपको.

जी ब्याह करवा दो चिकन फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है नई मूवी रिलीज हो रही है जी वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की। अब ब्याह करा दो के लिए थोड़े बहुत पैसों का नोहा तो होना ही चाहिए, तो वो भी करेंसी की अपडेट आपको देते चलते हैं कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ विच इज 4:20 PM मंडे जून द 1st एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.85 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.74, इंडियन रुपीज ट्रेडिंग एट 95.17, जबकि कनेडियन डॉलर 1.38 पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी रुपी 278.46 पाकिस्तानी रुपीज अ ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर, जबकि नेपाली रुपी 152.35 पे स्टैंड कर रहा है। बांग्लादेशी टका 122.74 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर। तो ये तो हुआ आपके लिए करेंसी अपडेट। इस गाने के उस पार आपको बताऊंगी कि सोने शादी करा दो गाना गा रहे थे हम, तो उसमें पैसे भी लगेंगे और सोना भी काफी सारा लगेगा। लेट्स गो टू गोल्ड प्राइस अपडेट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: चिकन बनाना
15: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
16: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
17: So, ruko jara, sabar karo.
18: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

A very good afternoon listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. बल्कि अब तो गुड इवनिंग का टाइम हो गया. मार्विन कहाँ घूम रहे हो यार? बस ऐसा ही होता है साहब. मैं घूम के आया हूँ काफी जगह, from Malaysia to India to Paris, and I think you all should take some time to travel as well. It's 5:12 in the studio clock, 5:12. I'm going to be with you till 7 o'clock, and हमेशा की तरह इस शो का नाम है The Bindaas Show. और अगर आज आपकी जिंदगी में कोई खुशी की बात है, वैसे तो जीना इटसेल्फ, हैविंग अनदर डे टू लिव इज अ जॉयस थिंग, बट अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज, सम अचीवमेंट्स, देन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. एक गाना है जी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि थोड़ा सा बैकलैश मिला है, एंड दैट इज द रीमेक ऑफ द चुनरी चुनरी. लेट्स गो विद दैट वन. वंस अगेन स्टूडियो लाइंस आर ओपन. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, The Bindaas Show on Fun Asia Radio, bringing the community together.

0: लो जी, चुनरी चुनरी के साथ साथ लेट्स डू अ गुड आफ्टरनून टू सुनीति जी. सुनीति जी, हाउ आर यू?
1: गुड आफ्टरनून मालवीय, सो ग्लैड टू हियर योर वॉइस अगेन.
0: एंड आई एम ग्लैड टू
1: लॉन्ग वेकेशन.
0: इन कहां लॉन्ग लगता है?
1: आई लव यू. थैंक यू फॉर बीइंग वेलकम टू द शो. आई एम जस्ट
0: थैंक यू. लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग लगती ही है मैम. छुट्टी कहां लॉन्ग होती है? 3 हफ्ते के लिए गया था यार, उसमें से एक हफ्ता मलेशिया लगा. और यू नो, मलेशिया में ना एक बड़ी अजीब सी पहले मेरे साथ घटना हुई. घटना ये हुई कि जहां भी मैं जाऊं, सो माय वाइफ इज फ्रॉम मलेशिया, शी इज बॉर्न इन मलेशिया, तो उनको मलेशियन आती है ऑफ कोर्स, मुझे नहीं आती. तो जहां भी मैं जाऊं, जब हम किसी से कुछ लेते थे तो एक आवाज सुनने को मिलती थी, तेरी माँ का सी. मैं कहा तेरी माँ का सी? मैं कहा ये तो पंजाब में होता तो हम तो पहले घबरा जाते कि कौन सी गाली निकाली है. फिर पता लगा कि तेरी माँ कैसी का मतलब होता है थैंक यू. मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब थैंक यू बनाया तुमने. खैर, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है हर जगह लाइफ में चलते रहना चाहिए. अगर आपको कोई मलेशियन मिले तो थैंक यू करने की जगह उसको बोलना तेरी माँ कैसी. मतलब मैंने कहा तो ये होगा कि तेरी माँ कैसी है, उसी तरह तेरी माँ कैसी. आपने भी कुछ नया सीखा, मैंने भी कुछ नया सीखा. फिलहाल नए गाने की तरफ, माशूका कॉकटेल 2. दिस इज फनेश.

देखो ये बड़ी पुरानी प्रथा है, कई घरों में तो आज भी चलती है कि पत्नियां जो है ना वो पति के खाने के बाद ही खाना खाती हैं। कई जगह ये ट्रेंड चेंज हो गया है जॉब्स के हिसाब से, टाइमिंग्स के हिसाब से, बट अभी भी काफ़ी हद तक ये प्रथा फॉलो की जाती है। अब इसके पीछे ना वैज्ञानिक और शास्त्रीय कारण है। वो ये है जनाब कि जब एक वैज्ञानिक दवा बनाता है ना तो पहले बंदरों पर ही टेस्ट करी जाती है, फिर उसका एक्चुअल लॉन्च होता है।

बंदा जी, नाम अरविंदास है। 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:26। और बदनाम ना एक्चुअली मैंने देखा है कि जो मर्जी हो जाए ये मर्द को ही किया जाता है। अब देखो, दुम तो यू नो कुतिया की भी टेढ़ी होती है, बट दुम की बात करते हैं तो कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, ऐसे बोला जाता है। स्वाद जो अदरक का है वो ना बंदरिया को समझ आता है, पर बंदर ही बदनाम किया जाता है। ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ऊंट ही क्यों आए, ऊंटनी को किसी ने रोका था पहाड़ के नीचे से, धक्का मार दिया था। आ बैल मुझे मार, गाय क्यों नहीं मार सकती, वो भी तो टक्कर मारती है। खैर, मैं आपके साथ मुझे 7 बजे तक, कोई खास बात आपके पास है तो जरूर शेयर कीजिएगा। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। एक 3 हफ्ते की छुट्टी मनाई जी मलेशिया, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिड वेदर रहता है जैसे बॉम्बे है, बट वहां पे एक जगह है जी जिसका नाम है गेंटिंग हाईलैंड्स। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, जरूर जाइएगा एंड मेक श्योर यू स्पेंड सम टाइम इन गेंटिंग हाईलैंड्स नेक्स्ट टाइम यू आर इन मलेशिया। फॉर नाउ इट्स वन मोर ट्रैक, उसके बाद कुछ और बातें। खास कमिंग अप इज कॉकटेल 2 का नया गाना, दिस इज कॉल्ड पल पल।

0: Heading to a short commercial break. इस ब्रेक के बाद आके करेंगे जी बात अबाउट द IPL फाइनल दैट वी सॉ यस्टरडे. कांग्रेचुलेशंस टू रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एंड विराट कोहली फॉर दैट वंडरफुल विन दैट हैपेंड यस्टरडे. डिटेल्स विल बी शेयर्ड राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. दिस इज 104.9 FM फन एशिया रेडियो.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
3: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी.
4: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
13: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
14: Ladies and gentlemen, you're not ready for this.
2: फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे. कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल. पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट.
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: रुको जरा, सबर करो.
18: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया.

0: ऑल राइट भैया, चावल से बर्फ बनानी है। देखो चावल से बर्फ बनानी है, बाकी सारी सब पुरानी कहानी है। चावल से बर्फ बनानी है, वो कैसे बनानी है? कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है?
1: हेलो, मेरा नाम राजेश है।
0: राजेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया।
0: आज तो सुबह भी लगता है आपका दिन अच्छा ही शुरुआत हुई है। बीवी सो रही थी जब घर से निकल गए थे?
1: नहीं, जागी थी पर
0: जागी,
1: मैं पलटी
0: पर मिले मिल मिल मिल नहीं पाए आप, थोड़ी सैडनेस है वहां पर। वो कोई बात नहीं, पर दिन
1: मिल नहीं
0: अच्छा
1: पाया
0: हुआ
1: और बाजू से सुमड़ी से कल्टी मार लिया
0: तो दिन अच्छा निकल गया। वेरी गुड वेरी गुड, जान है अभी भी आप में। अच्छा, घर पहुंच के बाद बाकी बात पता लगेगी। बताओ
1: यार,
0: तो
1: ये
0: ये
1: जो
0: बर्फ
1: जो
0: से
1: हिसाब से धूप चल रही है, जान रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल, प्याज खाया करो, लू नहीं लगती है। अच्छा ये बताओ कि ये चावल से जो बर्फ है ये कैसे बनानी है?
1: फिर ये जो चावल घर पे आता है तो हम साफ करते हैं, तो उसमें से जो राई है उसको निकाल के फेंक दो, तो राइस में से राई निकाल के फेंक दिया तो बच जाएगा आइस और बर्फ बन जाएगी।
0: पर राइस में से राई निकाल दियो, सी बचेगा ना सी।
1: हाँ, तो यही, मैं तो हिंदी हिंदी से निकाल लूंगा ना, इंग्लिश से नहीं निकाल
0: अच्छा,
1: लूंगा।
0: इंग्लिश से अगर निकाल दोगे यार, आपको स्पेलिंग बी में होना चाहिए था। व्हाई डिडंट यू गो टू स्पेलिंग बी माय ब्रदर राजेश? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हाँ जी, सिंपल सी बात है। हाँ जी हाँ जी, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना बढ़ा लो। कौन बोल रहा है, श्रीमान या श्रीमती?
2: खुशी,
0: हाय खुशी।
2: हाय।
0: सो खुशी, एवरीथिंग इन इज खुशी इन लाइफ, एवरीथिंग हैप्पी?
2: या
0: वेरी गुड खुशी। नाउ टेल मी हाउ टू मेक अ बर्फ फ्रॉम द चावल।
2: Because chawal means like rice in English,
0: यस,
2: then you take the R away and then it becomes ice.
0: बट यू नो आई हैव ट्राइड टू टेक आर अवे फ्रॉम राइस बट इट कीप्स होल्डिंग बैक एंड इट सेज नो आई नीड द आर, सो हाउ डू वी डू दैट? But I got your point. I'm just pulling your leg. Yes, that is totally right. R निकाल दो यार, राइस में से आइस बन जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कभी। और कभी ज्यादा टेंशन हो जाए तो एक ही काम करना है, फन एशिया रेडियो पे ट्यून इन करना है और मस्त मस्त गाने सुनने हैं। Here we go with the next track. इसके बाद ले रहे हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

अब जैसे छोटी सी बात आपको एक और बताता हूँ, किसी ने बोला मार्विन यार तुम तमीज से बात किया करो, मैंने तो इतनी बार आप लोगों को भी बोला है तमीज का नंबर भेज दो कर लूंगा कॉल।

0: सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर भगवान के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर भगवान से सच मन से पूछना कि हे प्रभु, जब अकल बंट रही थी तो मैं कहां था।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
15: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
14: के टू ड्राइव मतलब?
15: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
14: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
15: 100%
16: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजी

0: 9148140402 केटो ड्राइव डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
8: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

Absolutely, Bindaz Bolo Ji, Namar Bindaz Bolo, kya hal chal hai DFW? I'm back from a holiday and you are back from a short commercial break. 6:06 in the studio clock, 6:06. Aaj Monday hai ji, na chahte hue bhi ye Monday jo hai na, aa hi jata hai bas. Ye usi ki tarah hai jo dost hote hai na, dost na bhi bulao to ghar pe tapakte hi hai. Isko bhi dost hi samjha karo, because jab tak zindagi mein naye din aate rahenge, tab tak nayi opportunity, naya mauka, kuch na kuch apne man ko shanti dene ke liye, apne man ko khushi dene ke liye, kuch achieve karne ke liye, kuch kamane ke liye, kisi ka pyar paane ke liye, ये दिन देते हैं ऊपर वाले. तो अगर मिल रहे हैं आपको ये दिन, थैंक हिम फॉर येट अनदर डे. एंड अगर आपके पास आज कुछ खास है, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी, यानी जॉयस मोमेंट, देन यू विल गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन 9722355555. मैं आपकी खुशी में बिल्कुल हाजिर होना चाहूंगा. केक वेक की टेंशन मत लें, आजकल मीठा बंद किया हुआ है, इसलिए बस विश करना चाहूंगा आपको और आपके चाहने वालों को. Like I said, I'm going to be with you till 7 o'clock. Any new request are always welcome. एक सवाल है जो हिस्ट्री में किसी ने नहीं पूछा, बट बहुत सारे लोग जानते हैं इस सवाल को. पूछने की हिम्मत किसी की नहीं है. मैं चाहता हूं कि एक प्रेस बिठाई जाए, एक बड़ा एजेंडा बनाया जाए इसके पीछे, और कुत्तों से ये पूछा जाए कि कुत्तों ये बताओ कि ऐसा क्या कहा था धर्मपाजी ने आपको कि आप लोग बसंती, मतलब बसंती आप लोगों के आगे नहीं नाच सकती. Why? What did he say? कि इतनी हिस्टोरिक चीज आज तक भी बसंती आपके आगे नहीं नाची. Why?

That was जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, और मैं बचपन से ही सुनता आ रहा था कि ये बसंत है एंड खुद तो गया के मत नाचना। और मैं हर कुत्ते से पूछता हूँ व्हाट इज द थिंग दैट धर्मेंद्र पाजी सेड टू यू, पर वो कहते हैं कुछ बातें दबी रहनी चाहिए मार्विन। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस को पता होगा तो हम उनसे पूछ लेंगे, बट नहीं भी पता होगा तो क्या बात है, कई चीज़ों का जवाब नहीं होता है ना। जैसे माँ को गुस्सा क्यों आता है, आता है उनकी मर्जी है, लेडीज़ अपने टाइम से चलती हैं, उनको चलने दिया करो। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक टाइम है और एक तरीका है ना। सूरज जो है ईस्ट से उठता है भाई और वेस्ट पे सो जाता है, अब वो नॉर्थ और साउथ से थोड़ी निकलेगा। पर हाँ, चांद जो चांद छुपा बादल में है ना, ये किसी भी एंगल से निकल सकता है। और इसकी वजह क्या है कि जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं। सो चांद हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, चांद कैन कम आउट फ्रॉम एनी डायरेक्शन बिकॉज द चांद इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्यूटी पार्लर्स एंड द ब्यूटी पार्लर्स आर लोकेटेड इन ऑल द डायरेक्शन। लिटिल सिंप्लीफाइड फॉर यू। ऑलराइट, एक गिव अवे है मेरे पास, उसके पास जाने से पहले आपको ये बता दूँ 15th of June इज वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड फन एशिया, बिकॉज वी आर अ म्यूजिकल कंपनी, वी वॉन्ट टू गिव यू अ ग्रेट ऑफर, और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, मजा भी आएगा। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑन द 15th of June जैसे कि मैंने कहा, एंड वी वॉन्ट टू हेयर योर स्टोरी। वी ऑल हैव दैट वन सॉन्ग वी नेवर स्किप है ना, कोई एक गाना हम सबका फेवरेट है, आपका भी होगा, दैट one melody that brings back memories or that special dedication connected to someone close to your heart. World Music Day, aap apna love for music share kar sakte hain hamare saath by filling out our Google form available in our website and social media. Website kya hai ji? funasia.net. You go there, wahan pe aapko ek form milega. Contest is open from the 1st to the 15th of June, yani ki aaj se leke 15 June tak ye aapke liye open hai. And you can tell us about your favorite music, your unforgettable music memory, or what music means to you. And who knows, आपकी स्टोरी could win you some exciting prizes, because music isn't just entertainment, it's emotion, nostalgia, celebration and connection. होगा क्या, जब आप उस फॉर्म पे जाएंगे you'll see 7 different genres of music and उसमें आप अपने फेवरेट गाने उस genre के डाल सकते हैं, and if your song is selected you will get a prize from Funasia. funasia.net, all you have to do is put your favorite music in that form, and if your songs are selected, आपको मिलेगा एक इनाम Funasia Radio की तरफ से। आज एक और इनाम हमारी तरफ से, which is a giveaway coming up from Flavor Lounge। दे क्या रहे हैं आपको, हमेशा की तरह देसी स्टाइल ढाबा स्टाइल चिकन या फिर दाल मखनी, आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी, डाइन इन का ऑफर है। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ दिस वंडरफुल जेंटलमैन हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सिंगर, वायलिनिस्ट, एंड ही इज वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। मैं एक गाना लगा रहा हूँ, आपको बताना है कि मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, इन रेफरेंस टू दिस सॉन्ग हु सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे। इफ यू गिव मी द राइट आंसर एंड यू हैव नॉट वन फ्लेवर लाउंज का देसी स्टाइल चिकन या दाल मखनी इन द लास्ट 30 days, गिव मी अ कॉल। मेक श्योर जब आप कॉल करें तो आपने ये गिव अवे पहले ना जीता हूं। नंबर टू, यू आर एबल टू गो टू प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एंड एंजॉय दिस। कॉलर नंबर थ्री हु गिव्स मी द राइट आंसर, आई एम लुकिंग फॉर द नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे इन रेफरेंस टू द सॉन्ग दैट आई एम प्लेइंग। 972-235-5555.

0: टेकन फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम, एंड हमारा दिल तो किसी और के पास है भी। खैर, पहले नंबर पे कौन है मेरे साथ, करते हैं उनसे बात। वेरी गुड इवनिंग टू यू, फन इज योर रेडियो, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज शुभम।
0: हाय शुभम, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग फैंटास्टिक एज वेल। शुभम, डू यू नो द नेम ऑफ द डायरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर?
1: आई नो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग इज इस्माइल दरबार।
0: इस्माइल दरबार कहते हैं हमारे शुभम भैया, कॉलर नंबर वन। लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन कॉलर नंबर टू। गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हु इज दिस? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी?
2: या, दिस इज वीरेंद्र सक्सेना।
0: वीरेंद्र सक्सेना साहब कैसे हैं?
2: बढ़िया बढ़िया। आज फिर इस्माइल दरबार।
0: इस्माइल दरबार कहते हैं वीरेंद्र भाई, कॉलर नंबर दो पे आप थे। लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन कॉलर नंबर थ्री, द लकी वन इफ यू गॉट द राइट आंसर। गुड इवनिंग फनेजिया, व्हाट्स योर नेम?
1: आनंद।
0: आनंद ही आनंद, कैसे हैं आनंद?
1: बस आप बढ़िया, बताओ।
0: हम तो बता ही रहे हैं, हमारा तो काम ही बताने का। बड़े भाई आप बताओ, इस म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मालूम है?
1: ये इस्माइल दरबार।
0: इस्माइल दरबार, अब ये बताओ कि प्रेस्टन रोड फ्रिस्को जा सकते हैं?
1: बिल्कुल जा सकते हैं, जाते रहते हैं।
0: तो अगर होल्ड कीजिए मेरे लिए यार, मुबारक हो, आप जीत गए हैं। उनका खाना पीना बताता हूँ डिटेल्स, स्टे ट्यून्ड विद मी। यस, इट इज इंडीड इस्माइल दरबार सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, एंड टुडे इज द 1st of June, आज ही के दिन इन द ईयर 1964 ही इज नाउ 62 ईयर्स ऑफ एज। सूरत गुजरात से बिलोंग करते हैं, और सूरत भी अच्छी, सीरत भी अच्छी, और काम कमाल का। इस्माइल दरबार साहब जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों को म्यूज़िक दिया है, और उसमें से अगर कुछ फिल्मों की बात की जाए तो खामोशी द म्यूज़िकल, देवदास, हम दिल दे चुके सनम विच इज़ डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग, किसना द वॉरियर पोएट दैट वाज अनदर मूवी, एंड मैनी अदर्स एज वेल। बट आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक, ही डज सम ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, एंड माई बेस्ट विशेज टू दिस पावर हाउस ऑफ अ म्यूज़िक डायरेक्टर Mr. Ismail Darbar. And of course, from the team of Fun Asia, it's happy birthday to you, sir.

0: पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
3: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
2: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
4: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
5: Chicken banana.
6: चिकन बनाना
7: ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट।
8: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट सैल्स नैशविल हॉट चिकन। दे डोंट जस्ट मेक इट, दे मेक इट अनफॉरगेटेबल। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बोल्ड फ्लेवर्स, जंबो चिकन टेंडर्स, नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट। लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन, सैल्स नैशविल हॉट चिकन, वी फिक्स हैंग्री।
9: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
10: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
11: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com।
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
13: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
14: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
15: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

देखो, ठोकर सिर्फ अकल नहीं देती, कहते ना ठोकर खाने से अकल आती है, ठोकर सिर्फ अकल नहीं देती भैया, अगर वो उंगली लग जाए ना तो कभी कभी नाखून भी उखाड़ देती है ठोकर। देखो, खाओ खाओ, खाना खाओ, फ्रूट खाओ, फल खाओ, प्रोटीन खाओ, ठोकर मत खाओ यार। और अगर ठोकर खाओ भी तो प्लीज़, वो जो छोटी वाली उंगली है ना हमारे पैर की, पता नहीं उसको क्या शौक है, 5 उंगलियां हैं पैरों में, इतना बड़ा अंगूठा भी है, वो नहीं लगता, वो छोटी उंगली कोई तकलीफ है बस वही लगती है। 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय हेल टू नेल। हेल टू नेल वो कंपनी है जनाब जो आपके घर की छत को रखती है बिल्कुल टॉपोटिक। और आपको पता है कि डालस फोर्ट वर्थ में बहुत सारी हेल स्टॉर्म्स और बहुत सारा कांड हो जाता है रूफ्स का, तो अगर आपकी छत कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर आपको लगता है कि इस साल की स्टॉर्म से पहले आपको रेडी होना है, देन ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स। शिंगल्स हो या TPO टू मेटल रूफिंग हो, दे हैंडल बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विद द क्वालिटी एंड केयर। और यही नहीं, दे ऑल्सो ऑफर जनरल रीमॉडलिंग, आपको घर में कुछ भी करवाना है, पेंटिंग, रिपेयर्स, कॉन्क्रीट वर्क, टू कीप योर प्रॉपर्टी लुकिंग एट इट्स बेस्ट। इंस्पेक्शन एंड क्लेम असिस्टेंस आपको देते हैं जी। चेकआउट देयर 5-star गूगल रिव्यूज, खुद ही कह रहा है जी गूगल इटसेल्फ, 5-star रेटिंग है। एंड यू कैन कॉल निजार अहमद साहब, आज ही कॉल करें 6825619795, दैट्स 6825619795। हेल टू नेल इज दैट नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर। सुपर हीरो दादा एक फिल्म आई है जी, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, उसका गाना आप सबके लिए।

यार ये वैसे तो कहने को रीमेक है, पर इसमें रीमेक तो कुछ नहीं है, सेम म्यूजिक लिया, बीच में थोड़ा सा टू टू टू टू ऐड कर दिया और रीमेक बोल दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं यार। पर आज जो एक और बात बोलने वाला हूँ, बिल्कुल भी मेड अप नहीं है, 100% ट्रूथ है। और ट्रूथ ये है कि आज रंगनाथन, रंगनाथन का बर्थडे है। कौन है रंगनाथन? 1 जून 1970 में जन्म हुआ इनका। रिसेंटली डैलस भी आए हुए थे, 56 ईयर्स ऑफ एज आज ही के दिन, यानी कि जून 1, 1970, जमशेदपुर बिहार में इनका जन्म हुआ बाबू। और अगर इनकी बात की जाए तो फिल्म प्रोड्यूसर बाद में बने, स्क्रीन राइटर बाद में बने, पहले बने एक्टर। और एक्टिंग जब करी पहली फिल्म से ही बन गए थे एकदम, मतलब लड़कियों के लिए हार्ट थ्रॉब, और सारी दुनिया में बात हो रही थी, स्पेशली इंडिया में तो इतनी बात हो रही थी कि कौन आया है ये लड़का। अगर इनकी बात मैं करूँ तो पहले लगाते हैं इनका गाना, और आई थिंक इस गाने के साथ सबको पता लग ही जाएगा। एंड वाई कीप इट अ सीक्रेट मैन, आई थिंक इट इज टाइम टू लेट यू नो, इट इज मिस्टर माधवन रंगनाथन। एंड माधवन साहब, पहली फिल्म आई थी जो हमारे को पसंद आई या बॉलीवुड साइड पे, दैट वाज ऑफ कोर्स RHTDM, रहना है तेरे दिल में। और वहाँ से दोनों साइड, आई मीन दिया मिर्जा इटसेल्फ वाज अनदर नेम दैट रीच्ड आउट टू एवरी हार्ट इन दी इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, एंड साथ साथ माधवन भी कम नहीं थे। एक गाना उन्हीं की फिल्म का लगा रहा हूँ, विच इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नंबर, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल इन्जॉय दिस वन। हैप्पी बर्थडे मिस्टर माधवन फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदा।

This part of the show is brought to you by My Time Equity. Welcome back to your evening drive time show after a short commercial break. Diljit Dosanjh with that track, which is called Case. और इसकी बहुत पॉपुलैरिटी जी, ही वॉज रिसेंटली इन डैलस एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही गेव, नो डाउट सोल्ड आउट द शो एंड मेनी अदर शोज ही हैज सोल्ड आउट, इंक्लूडिंग मैडिसन स्क्वायर गार्डन, दो बारी कंसेक्यूटिवली ही सोल्ड दैट आउट एज वेल. व्हाट अ परफॉर्मर ही इज इंडीड. गॉड इज ऑन हिज साइड एंड यू नो व्हाई, बिकॉज ही इज वर्क्ड हार्ड. ये मत सोचिए कि भगवान ही आपके लिए सब कुछ करेगा. वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. अगर आप हिम्मत करेंगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा. And sometimes you need the right people to work with you, and that is My Time Equity. If you're looking to grow your financial portfolio, then these are the people who can get your money to double up, and that is by doing smart investments. Chahe wo crypto ho, chahe alternative investments ho, they do it all. MyTimeEquity.com is that website, MyTimeEquity.com, and it is led by Principal Sudhir Pai, who is also a honed businessman, somebody who's done many successful businesses, including My Tax Filer. So make sure to reach out to My Time Equity. Give them a call, 469-702-1272. That's 469-702-1272. Kuch gaano ka aur waqt hai mere paas. Uske saath saath, of course, I always share some information. And the information today is that today is National Go Barefoot Day. You know, hum bhool jaate hain ghaas pe chalna aur nange paon chalna to waisi ek जो सबसे अच्छी चीज़ थी हमारी बॉडी के लिए, वो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर गए. अब तो घर में भी बैठे हैं तो चप्पल पहनी हुई है, या यू नो होम स्लिपर्स और सो कॉल्ड द कम्फी शूज़ दैट वी वेयर और द कम्फी स्लिपर्स, कुशन स्लिपर्स. बट घास पे चलना और एक्चुअली धरती पे चलना आपके लिए बहुत अच्छा है. द मिनरल्स गेट सोक्ड अप इनटू योर बॉडी. एंड इफ यू जस्ट वांट टू डू दैट टुडे, यू विल आल्सो बी सेलिब्रेटिंग नेशनल गो बेयरफुट डे. सो अगर आपको नेचर अच्छी लगती है और या अपनी सेहत से प्यार है, जो आई थिंक हर इंसान को होना चाहिए. आई वॉज निग्लेक्टिंग टू माई हेल्थ, बट नाउ आई लव इट एंड आई डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी टू मेक श्योर दैट आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. यू ऑल्सो गो आउट देयर, वॉक बेयर फुट इन योर बैक यार्ड टुडे एंड एंजॉय नेशनल गो बेयर फुट डे. हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक दैट इज लाइंड अप फॉर यू ऑल, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक. आई होप यू एंजॉय दिस वन.

ताबों के परिंदे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एब्सोल्युटली नहीं मिलेगी यार, एक ही बार आई है एंड जब तक है ये जिंदगी इसको जी लो, क्योंकि ये तो आपके पास ही है यार। देखो कहते हैं चाय वही जो पी ली, जिंदगी वही जो जी ली भैया, तो जी लें इस लाइफ को, एंजॉय करना एंड टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। यू नो आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में बहुत सारे प्रेशर हैं, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है यार, आपके ऊपर ही है ना। तो अपने आप को खुश रखना सीखिए। आई वॉज रिसेंटली इन इंडिया, कुछ ज़्यादा नहीं बदला, ऑफकोर्स मॉडर्नाइजेशन आ गई है एंड ऑल द ब्रांड्स दैट यू कैन सी इन द वर्ल्ड नाउ अवेलेबल इन इंडिया, बट उसके साथ साथ छली जो है वो 80 रुपये की होगी, स्पेशली इफ़ यू गो टू द माउंटेन्स। बाकी अभी आप नीचे खाओगे, मतलब नीचे मतलब यू नो स्टिल इन द प्लेन्स, तो 40-50 रुपए में फिर भी मिल जाएगी, बट पहाड़ों की छली हो गई है बड़ी, एक तो साइज़ उसका डबल हो गया और 80 रुपए की हो गई है भैया, भुनी हुई छली, भुट्टे का रेट। खैर आप भुट्टे से टेंशन मत लें, क्योंकि आपको भुट्टा नहीं, आपको मैं खिलाऊंगा सैल्स हॉट चिकन, एंड सैल्स हॉट चिकन इज ब्रिंगिंग एन अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। जिसको मिर्ची खानी अच्छी लगती है, ऑल द लेडीज लिसनिंग टू मी, जिनको ऐसा करना भी पसंद है और साथ साथ उफ वो बड़ी मिर्ची और कहके और खाने का शौक है, देन दिस इज द डील फॉर यू। यू विल हैव 10 मिनट्स टू फिनिश 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स, ठीक है जी, क्या 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट चिकन टेंडर्स आपको खाने हैं 10 मिनट में विद ओनली 1 कप ऑफ मिल्क एंड एब्सोल्युटली नो डिपिंग सॉस, ठीक है जी। जो उनका सबसे स्पाइसी लेवल के 3 एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स हैं वो आपको खाने, मैं ये चैलेंज नहीं लूँगा। मैं तो कहूँगा 10 रुपये मेरी तरफ से रख ले भाई, मेरे को शौक नहीं है इतनी मिर्ची खाने का, वैसे भी मिर्ची का शौकीन नहीं हूँ, बट फॉर ऑल द लेडीज दैट लव स्पाइस या मेन दैट लव स्पाइस, दिस इज योर चांस। 10 मिनट में 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाओ एंड द प्राइजेज विल बी टोटली वर्थ द पेन। एक जंबो टेंडर खत्म करते हैं गेट अ फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज, हैं यार ये तो ट्राई करना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं। एक जंबो टेंडर अगर आपने खत्म कर लिया 10 मिनट में, ओए गेट अ फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज, नॉट बैड। फिनिश 2 जंबो टेंडर्स, एंजॉय फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज, एंड इफ यू कॉन्कर ऑल 3 इन्फर्नो टेंडर्स यू विल विन ग्रैंड प्राइज अ फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज। ओ यार सही में दोबारा से रिपीट कर दूं, सैल्स हॉट चिकन है जी जो कि रिचर्डसन वाला है, उसने आपके लिए डील निकाली है। आपको ये डील मिलेगी 6th of June 4 PM सैल्स चिकन रिचर्डसन में। दोबारा से बता रहा हूं, अगर 10 मिनट में 3 जंबो एक्स्ट्रा टेंडर खत्म कर दिए तो 30 डेज तक एक सैंडविच फ्री, अगर 2 खत्म किए तो एक सैंडविच 15 दिन तक मुफ्त, और अगर एक टेंडर फिनिश किया तो एक सैंडविच 7 दिन तक एब्सोल्युटली फ्री। जबान आपकी, मिर्ची का लेवल उनका, डिपिंग सॉस कोई नहीं, एक ग्लास दूध का। इफ यू अप फॉर द चैलेंज गो टू सैल्स हॉट चिकन ऑन द 6th of June दैट इज सैटरडे 4 PM ऑनवर्ड्स, एंड हु नोज आपकी लिस्ट में हो सकते हैं वो फ्री वाले मील्स। Sal's Hot Chicken in Richardson, 6th of June. Contest है, 3 टेंडर खा गए मिर्ची वाले तो 1 महीने तक सैंडविच खाइए, अगर 2 खा गए तो 2 हफ्ते तक यानी कि 15 दिन तक खाइए, और 1 भी खत्म कर दिया तो 7 दिन तक फ्री टेंडर, Sal's Hot Chicken.

देखो भैया, जो शुरू होता है उसको खत्म होना जरूरी है, जो आया है उसको जाना जरूरी है। बट जाते जाते आपको ये बता दूं कि आपके टैक्सेस है ना, वो भी बड़े जरूरी है, नहीं तो अंकल सैम आगे खटकाई करते हैं आपके घर पे। इससे पहले कि वो खटखट नॉक आपको सुने, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू द बेस्ट इन टैक्सेस, एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। कॉल देम 469-942-9888। नंबर याद कौन रखता है आजकल कमबख्त? आजकल तो फेसबुक या इंस्टाग्राम का टैग ही बहुत होता है, बट नॉनदलेस गूगल देम, agfintax.com इज दैट वेबसाइट, एंड दे विल मेक श्योर दैट योर टैक्सेस आर डन राइट। विद दैट इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, गुड नाइट, आदियोस। पर आपको ये बताता चलूं कि आज ही के दिन अगर इतिहास की बात की जाए, द ग्रेट अमेरिकन कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन मेड हिज डेब्यू एज द होस्ट ऑफ द टुनाइट शो, दैट वॉज इन द ईयर 2009 ऑन द सेम डेट विच वॉज द 1st of June, विच बिकेम लॉन्गेस्ट रनिंग लेट night talk show. However, he felt after less than he left the show after 1 year, and that was the Conan O'Brien debut of the Tonight Show. Mera ho gaya ji waqt, aaj ke liye aapse lunga ijazat. After me is coming a hippie. After me is coming a hippie. Ippy the hippie is her name, and I'm glad that you know, we knew each other and she came onto the platform. Everybody is praising Ippy the hippie. Even aaj bhi mujhe call aaya tha, bole Marvin, Ippy the hippie is a good find. So I want you to stay tuned for Ippy the hippie, who's going to be entertaining you from 7 to 10. Me is saying bye bye, adios, good night. Ek baar hamesha bolunga, jo hamesha bolta hoon, yahi baat continue karta hoon aur bolta rahunga tab tak jab tak aapke dil ke kone mein ye baat gad na jaye ki bhaiya, you are the biggest priority in anything that you do. Zindagi mein aapki khushi, aapka well-being hona bahut zaruri hai. Because if you are happy, you are well, you are, your mind is not occupied with too many troubles, then you can give a lending hand to somebody. आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है, but आपको अपने आप से उम्मीद, और उस उम्मीद को आपको ही पूरा करना है. You are the only person that can take the best care of yourself. So make sure to spend some time with yourself. Last track, which is going to be a little bit, but here we go.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो।
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न, या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
9: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
0: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, the SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
14: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route.